सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: पंकज जी कोटा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा करते हैं जबकि भगवान सभी जगह है, कण कण में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं? महाराज जी,
2: मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो कहीं लालिमा दिखा दो तुम, तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना, उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आप दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए, तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं, हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को, दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता, दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में आई? ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आयो, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यही आओ इधर उधर सब गंदगी करो तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए, अगर 3 दिन वास करे तो 1 दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए, 1 दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। 1 दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा? तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए।
3: तो महाराज जी, जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है।
2: आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का, और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला, शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे लेकिन यहां निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर जलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया, करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया, या ठोकर लगी थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, युवा खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम आह, नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था। और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था, तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रखता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देख ये थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगलमय विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
14: श्रोतागण, भक्ति गीत के बाद स्वागत बा रउआ सबके, और ये कार्यक्रम अभी शुरू हो रहल बा आपन देह आपन देखभाल। जय में हम है राउर दोस्त दीपाली, तो सबसे पहले स्वीकार करें हमार प्रणाम, सुप्रभात। तो दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि एक कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा। तो हाँ, आज भी हम लेके आ गइल बानी ऐसने कुछ नुस्खा। आज हम बतावे जात बानी सबसे पहले जटामांसी के बारे में। दोस्तों, जटामांसी से पाचन सुधरेला, त्रिदोष के नाश होला तथा त्वचा और रक्त विकार में लाभ होला। जटामांसी कसैली, तीखा रस वाला, संदिग्ध और तीक्ष्ण गुण से युक्त होला। अनिद्रा, हृदय रोग, वमन, अरुचि, ज्वर, हिस्टीरिया, मिर्गी, दंत रोग, सूजन, मस्तिष्क रोग, स्मृति विभ्रम, स्मृति के कमजोरी, मूत्र रोग, मासिक स्राव की अनियमितता, आक्षेप, पीलिया, गैस व नेत्र रोग की दूर करेला। रक्त संचार सुधारेला, पेट दर्द, वमन और कुष्ठ आदि रोग के मिटावेला। आयुर्वेद में एके इहे गुण बतावल गइल बा। यूनानी तिब्ब के अनुसार ई दिल, दिमाग, जिगर तथा पेट के रोग के दूर करेला। ई पौष्टिक और बलदायिनी भी होला। ई बाल के काल भी करेला। हृदय के बेचैनी, पेट में अफरा तथा मासिक धर्म संबंधी अनेक कष्ट के नष्ट करेला। जटामांसी नेत्र ज्योति भी बढ़ावेला।

कौन कौन बीमारी से निजात मिल सकेला। नपुंसकता में समान मात्रा में जटामांसी, लौंग, जायफल और सौंठ लेके चूर्ण तैयार करी और दिन में 2 से 3 बार एक एक चम्मच के मात्रा में ली। दांत और मसूड़ा के रोग में जटामांसी के चूर्ण बारीक करके रोजाना मंजन की तरह दांत पर मली और मसूड़ा के मालिश करी। करे से दांत मसूड़ा के दर्द, खून और पीव आवल, मुंह की बदबू तथा दांत के दर्द आदि रोग समाप्त हो जाए। पेट में दर्द होके पे सौंठ, आंवला, काला नमक और जटामांसी के चूर्ण समान मात्रा में लेके दिन में 3 से 4 बार सुसुम या गर्म पानी से सेवन करे से पेट में होके वाला दर्द मिट जाला। अनिद्रा में जटामांसी की 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ रात के सूते से 1 घंटा पहले ली। हाई ब्लड प्रेशर होके पे जटामांसी, अश्वगंध और ब्राह्मी ये तीनों के समान मात्रा में लेके चूर्ण बनाई और ये दिन में पानी के साथ 2 से 3 बार सेवन करी। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाए। दिल के धड़कन बढ़े पे सुबह शाम 1-1 चम्मच दालचीनी में 1/2 चम्मच जटामांसी के चूर्ण और 1 चुटकी कपूर मिला के रोजाना ली और जब तक दिल की धड़कन सामान्य ना हो जाए यह खुराक लेते रही। मिर्गी रोग होके पे जब मिर्गी रोग में दौरा पड़े और रोगी बेहोश हो जाए तो जटामांसी के चूर्ण नथुना में लगा के सुंघाई। त्वचा में निखार लावे और एके बरकरार रखे खातिर गुलाब जल में जटामांसी के जड़ के घीस के चेहरा पर लेप करी आ 1-2 घंटा के बाद चेहरा के पानी से धोली। ई करे से चेहरा में निखार आई। हिस्टीरिया ये रोग प्राय स्त्री के होला जेकर मुख्य कारण तनाव ही मानल गई बा। 4:2:1 के अनुपात में जटामांसी के जड़ के चूर्ण, वज के चूर्ण और काला नमक मिला के 1 सप्ताह तक रोजाना शहद के साथ 1/2 चम्मच के मात्रा में दिन में नियमित रूप से ली।

0: जटामांसी से जुड़ल कुछ नुस्खा। अब चली जान लियल जाओ हरड़ के कुछ नुस्खा। अस्थमा रोग में यानी दमा में रात के समय हरड़ के रस चूसे से दमा की शिकायत दूर होला। यदि हरड़ के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक भी चूसी तो हरड़ के कसैला और कड़वापन काफी हद तक मिट जाई। दस्त और पेचिश में पुराना दस्त और पेचिश से राहत पावे खातिर अधपका हरड़ के 4 ग्राम गुद्दा में थोड़ा सा लौंग और दालचीनी के चूर्ण मिला के शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करी। कब्ज होके पे आयुर्वेद में कब्ज के अनेक रोग के मूल कारण मानल गई बा। 2 से 3 हरड़ के पिस्टी या हरड़ के 6 फल के काढ़ा बना के उसमें लौंग और दालचीनी के चूर्ण डाल के ये दोनों के मात्रा 4 ग्राम रात के सूते से 1.5 घंटा पहले ली। अपच अफरा और पेट दर्द में यदि छोटा हरड़ के भून के उसके चूर्ण 1 चम्मच में थोड़ा सा काला नमक मिला के सेवन कर जाए तो ये सब लक्षण शांत हो जाए। घाव होके पे हरड़ के भून के उसके बारीक चूर्ण बना के उसके छान ली। आ इस चूर्ण में इमली के पानी डाल के बारीक पेस्ट तैयार करी और प्रभावित उंगली पर लगाई। हरड़ में सैकड़े के गुण और इमली के एसिड जनित प्रभाव दोनों मिला के घाव के शीघ्र सुखा दी। में हरड़ की काढ़ा तैयार करके उसमें पानी मिला के आँख धोए से आँख के कई रोग नष्ट हो जाला। ऐसे लालिमा सूजन और दर्द आदि लक्षण के भी शमन होला। हरड़ बाल खातिर एगो टॉनिक के समान है। हरड़ के गुद्दा पीस के नारियल के तेल में तब तक धीमा आंच पर पकाई जब तक हरड़ के सार तेल में समाहित ना हो जाए। आ ई तेल के बाल के जड़ में रोजाना मालिश करे और लगावे से बाल मजबूत होला और ओकर रंग भी काला होखे लागेला। उसे सप्ताह में 1 से 2 बार हरड़ के काढ़ा से बाल के धोए से भी बाल काला और दोष रहित हो जाला। बवासीर में ताजा हरड़ के एरंड के तेल में सुनहरा ब्राउन रंग हो जाए तक भुनी, फिर ओकर चूर्ण बना ली। फिर जुबान पर 1/2 चम्मच चूर्ण रख के उसके चूसी और थूक के साथ धीरे धीरे अंदर जाएगी। ऐसे कब्ज दूर होई और अंततः बवासीर के नाश भी हो जाए, बवासीर के मस्सा भी दूर होई। दोस्त लोग हरड़ के प्रयोग करते समय मिर्च तेल तथा चरपरी तीखा एवं उत्तेजक वस्तु के सेवन ना करी तो शीघ्र लाभ हुई। दोस्त लोग ई रहल है आज के आपन कार्यक्रम आपन देह आपन देखभाल जिमे हमनी के जननी है सन जटामांसी और हरड़ से जुड़ल कुछ नुस्खा। तो अब दी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति। आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
3: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: हेलो, आप आ गए? ओके, 2 मिनट में आई।
12: प्रिया कहाँ जा रही है अभी?
11: अरे मम्मा अभी नहीं यार, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वापस आकर बताती हूँ।
12: अरे पर प्रिया, तेरी शादी है।
11: हाँ मम्मा, इसीलिए तो।
13: अरे ये चेंज नहीं है।
14: सॉरी सर, चेंज नहीं है और कार्ड मशीन भी काम नहीं कर रही है।
13: अरे पर मैं,
14: आप देखिए ना, अगर कोई कस्टमर आपको हेल्प कर सके तो।
13: ओके, हाय, आपके पास कुछ चेंज मिलेगा?
11: हाँ ये लो।
13: थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस।
11: कांग्रेचुलेशंस क्यों?
13: आपकी शादी है ना?
11: आपको कैसे पता?
13: अरे आप ड्रेस्ड अप हैं पूरी, मेहंदी, रिंग, पता तो चल ही रहा है।
11: ओह हाँ, थैंक्स, बट पता नहीं शादी होगी भी या नहीं।
13: मतलब आप शादी नहीं करना चाहती?
11: ऑफ कोर्स चाहती हूँ। क्या आपके पास कुछ टाइम है? I mean, मेरे साथ बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? मुझे थोड़ा मॉरल सपोर्ट चाहिए।
13: हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए ना क्या हुआ।
11: आप एक स्ट्रेंजर हैं, ऐसी रैंडमली मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, बट आपको देख के लगा शायद आप हेल्प कर सकते हैं।
13: I'll be more than happy to do that, ma'am.
11: मैम नहीं, प्रिया। और आप?
13: I'm नील।
11: नील एक बात बताओ, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते, सब परफेक्ट होता, शादी होने वाली होती, फैमिली खुश होती, और सडनली तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिससे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम क्या करते?
13: एक्चुअली मैं जरा भोला हूँ, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस मुझे समझ में नहीं आते। आप सीधे कहिए ना, प्रॉब्लम क्या है?
11: यार मैं ना बहुत प्यार करती हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, फिर वो मुझे मिल गया और अब हमारी शादी है, क्या करूँ?
13: आप शादी नहीं करना चाहती?
11: नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ, पर आज सुबह ही उसने मुझे बताया कि ही हैज लॉस्ट हिज जॉब। मतलब सब सही था, उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि अब वो काम नहीं करना चाहता। मैं कैसे रिएक्ट करूं समझ नहीं आ रहा। कल शादी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सब खुश हैं, मैं भी, फैमिली भी, क्योंकि लड़का अच्छा है, सेटल्ड है, पर अब ये देखो, मैंने बचपन से ही ना अच्छी लाइफ जी है, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, पैम्पर्ड हूँ हमेशा से, अब अचानक शादी से पहले उसने जॉब छोड़ दी, हमारा फ्यूचर कितना इनसिक्योर लग रहा है। क्या मैं अभी शादी तोड़ सकती हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? क्या वो ये समझेगा?
13: आप उनसे प्यार करती हैं या उनकी सिक्योर्ड लाइफ से?
11: ऐसा नहीं है नील, मैं बस प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ।
13: प्रिया, पर अगर आप उनसे प्यार करती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो आप क्या हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते?
11: देखो, वैसे तो शिव पार्वती जैसी परफेक्ट जोड़ी है हमारी, पर प्रैक्टिकली सोचो नील, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी?
13: शिव पार्वती जैसी जोड़ी है तो क्या सोच रही है मैडम, जाइए जाकर शादी कर लीजिए।
11: अच्छा, अगर पार्वती जी को सिर्फ जॉबलेस मिले होते तो वो कर लेती शादी? कभी कभी सुना है ऐसा?
13: हाँ, बहुत फनी है प्रिया। शिवजी और पार्वती कैसे मिले ये जानती है? उनकी कहानी जानती है आप? एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। कई युग पहले तारकासुर नाम के एक राक्षस से सारे देव परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास चले गए।
6: प्रणाम ब्रह्मदेव।
15: प्रणाम इंद्रदेव, आप इतना चिंतित क्यों हैं?
6: ब्रह्मदेव, मेरी चिंता का कारण तारकासुर है। वो देवों से युद्ध कर रहा है किंतु कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा है। आप ही कुछ कीजिए ब्रह्मदेव।
15: तारकासुर को ईश्वर ने वरदान दिया है। तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है।
6: किंतु महादेव तो देवी सती के मृत्यु के शोक में हैं।
15: जानता हूँ, महादेव योगी बन चुके हैं, इस संसार से परे हो गए हैं।
6: अब क्या करें ब्रह्मदेव, आप ही बताइए।
15: मैं देवी माँ को प्रसन्न करके उन्हें पुनर्जन्म लेने का निवेदन करूँगा, बस वो ही हमें बचा सकती है।
13: इसके बाद ब्रह्मदेव ने माँ शक्ति को प्रसन्न किया और देवी माँ इस धरती पर वापस जन्मी, राजा हिमावत और मेनका की बेटी पार्वती के रूप में। पर पार्वती को अपना पिछला जन्म याद नहीं था, फिर भी वो बचपन से ही शिवजी की सबसे बड़ी भक्त थी। फिर एक दिन

0: मेनका, पार्वती कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है।
1: शिवजी की पूजा में विलीन है वो। क्यों, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं?
0: मेनका, चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? पार्वती का हाथ मांगने कितने राजकुमार आ रहे हैं, किंतु वो सब को ठुकरा रही है। क्या तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रही है?
1: मुझसे तो कुछ कहा नहीं है उसने। एक काम करते हैं, अभी पूजा समाप्ति होने वाली है, फिर पूछते हैं उसे।
2: प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता, आपने मुझे बुलाया?
0: पुत्री पार्वती, तुम्हारे लिए बड़े बड़े राज्यों से संबंध लेकर आ रहा हूं, पर तुम हर बार उन्हें ठुकरा देती हो। क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं है?
2: पिताश्री, मुझे किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना।
1: तो क्या तुम्हारे मन में कोई और है?
0: हाँ पुत्री, बताओ। मैं वचन देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा।
2: जी पिताश्री, वो महादेव।
1: महादेव?
2: क्या हुआ पिताश्री, कुछ बोलिए ना, आपने वचन दिया है।
0: हाँ पुत्री, वचन तो दिया है, और देवों के देव महादेव से मेरी पुत्री विवाह करेगी तो मुझे प्रसन्नता ही होगी, किंतु ईश्वर अभी भी सन्यासी हैं, वो देवी सती के शोक में डूबे हैं, उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है पुत्री।
2: पिताश्री, आप बस मुझे महादेव की सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं तो उनके चरणों में भी रहकर खुश रहूंगी।
0: किंतु पुत्री,
2: आपने वचन दिया है पिताश्री।
0: ठीक है पुत्री,

0: जय शंभो, जय जय शंभो।
1: हिमावत राज, क्या कोई विपदा आन पड़ी है? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
0: हे ईश्वर, ये मेरी पुत्री पार्वती है और प्रभु ये आपसे विवाह।
1: नहीं, मैं अपनी सती का स्थान किसी को नहीं दूंगा।
2: हे ईश्वर, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं देवी सती का स्थान नहीं लेना चाहती, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए।
1: ठीक है, तुम मेरी सेवा कर सकती हो, परंतु मेरे ध्यान में तुम्हारे कारण कोई बाधा आई तो तुम्हें तुरंत कैलाश छोड़ के जाना होगा।
2: धन्यवाद महादेव, धन्यवाद।
3: ऐसे बरसों तक पार्वती शिव की सेवा करती रही। शिव जी कई दिन तक साधना करते थे और पार्वती बस उन्हें देखती रहती थी। पर यहाँ तारकासुर से परेशान होकर देव पार्वती और शिव को मिलाने के लिए कामदेव की मदद लेते हैं। कामदेव ने शिव जी पर अपने तीर चलाए और शिव जी की आंखें पार्वती पर पड़ी।
1: कितनी सुंदर लग रही है पार्वती, ये क्या सोच रहा हूं मैं? कामदेव,
2: क्या हुआ महादेव?
4: महादेव, क्षमा करें मुझे महादेव, मैंने केवल वही किया जो देवों ने मुझसे कहा।
0: तुमने मेरी साधना भंग की है, भस्म हो जाओ।
4: नहीं, ना, नहीं।
2: ये क्या किया महादेव आपने?
1: पार्वती, तुम्हारे कारण मेरी साधना में बाधा आई है। तुम शीघ्र ही कैलाश छोड़कर अपने पिता श्री के पास लौट जाओ।
2: नहीं महादेव, नहीं।
5: पुत्री, कौन हो तुम? इतनी युवा हो, इस वन में क्या कर रही हो?
2: मैं पार्वती हूँ ऋषिवर, मैं यहाँ ईश्वर की साधना करने आई हूँ।
5: कल्याण।

0: विष्णुदेव, विष्णुदेव,
1: ब्रह्मदेव, आप यहाँ?
0: पार्वती ने जो वर्षों से साधना की है उसकी अग्नि देवलोक तक पहुँच गई है। कुछ कीजिए विष्णुदेव, उसे रोकिए।
1: जानता हूँ ब्रह्मदेव, किंतु यह शक्ति की साधना है, इसे केवल महादेव ही रोक सकते हैं।

0: मेरी शक्ति, मैं स्वयं शक्ति हूँ। मैं ही सती थी। ईश्वर, मैं ही आपकी सती हूँ।
1: सती, क्या पार्वती सच में मेरी सती है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। मैं ब्राह्मण वेश में जाकर उसकी परीक्षा लूंगा।

0: ये शक्ति सती की शक्ति जैसी ही है, पर मुझे पहले परीक्षा लेनी होगी।
1: योगिनी, तुम्हारी साधना में बहुत भक्ति है, किसके लिए कर रही हो ये साधना?
2: ब्राह्मण, मैं शिव जी के प्रेम के लिए साधना कर रही हूँ।
1: तुम अपना यौवन उस भिखारी पर व्यर्थ कर रही हो, क्या मिलेगा तुम्हें? वो बस शमशान में घूमता है, वस्त्र भी नहीं है उसके पास, और तुम्हें उससे प्रेम है।
2: हे ब्राह्मण, देवों के देव है वो, महादेव है वो, उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनना मुझे। आप ब्राह्मण हैं और मैं प्रभु की साधना के समय कोई भी अपशब्द कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहती। मेरा और समय व्यर्थ ना करें, चले जाइए यहाँ से।
1: सोच लो पुत्री, एक बार और सोच लो, क्या सच में तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो, उसका प्यार पाना चाहती हो? अरे उसके पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या?
2: मैं महादेव से प्रेम करती हूँ, वो जो भी है जैसे भी है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी।
0: पार्वती, मैं हूँ तुम्हारा आराध्य ईश्वर।
2: ईश्वर, आप आ गए।
0: हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सती ही हो। तुम्हें पहचानने में देर कर दी मैंने, क्षमा कर दो मुझे।
2: नहीं नहीं महादेव, ऐसा ना कहिए, आप क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, मैं आप ही की सती हूँ, किंतु मैंने पुनर्जन्म लिया है और इसीलिए हमें फिर से विवाह करना होगा।
0: हाँ, मैं अभी तुम्हारे पिताश्री से बात करता हूँ।
3: इस तरह शिव पार्वती की शादी हुई और उनसे जन्मे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, और युगो युगो से शिव पार्वती साथ हैं। प्रिया।
4: हाँ,
3: क्या हुआ?
4: कुछ नहीं, वो मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है।
3: नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कुछ रियलाइज कराने के लिए कहानी नहीं सुनाई।
4: पर नील, सच, जब प्यार है तो जॉब का क्या लेना देना? I'm so stupid. मैंने ये सब सोचा भी क्यों?
3: अरे तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने?
4: वो
5: प्रियम, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुम ठीक हो ना? कल शादी है हमारी, कल तक नहीं रुक पा रही थी।
4: हाय विनय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी।
5: हाँ बोलो।
4: वो मैं तुमसे शादी।
5: क्या तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती?
4: वो
5: क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है।
4: अरे स्टूपिड, बोलने दो मुझे।
5: बोलो।
4: मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मिलने का मन था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बात करने का। एक जॉब के लिए क्या तुमसे शादी नहीं करूंगी?
5: व्हाट, क्रेजी, तुम पागल हो प्रिया। आई लव यू सो मच, मैं तो जानता ही था। वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
4: हाँ कहो।
5: वो मेरी जॉब, मैंने जॉब नहीं छोड़ी।
4: व्हाट?
5: हाँ, वो बस दिव्यांश के साथ में एक शर्त लगी थी, उसने कहा कि प्रैंक करके देखो, तो मैं तो जानता ही था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी जॉब से नहीं।
4: ओहो, खुद को क्या शिव समझते हो जो मेरी परीक्षा लोगे? एनीवेज, मीट नील।
3: हाय विनय, कंग्रेचुलेशन।
5: थैंक यू सो मच।
3: मैं चलता हूँ गाइज, मुझे लेट होने लगा है।
5: ओह, बट लिसन डूड।
3: हाँ,
5: थैंक यू।
3: क्यों?
5: आई डोंट नो, बस ऐसा लगा कि अभी जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ जरूर है।
3: मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शिव जी ने किया है। Have a happy married life.
4: अरे नील, stay in touch, okay?
5: हाँ, शादी में जरूर आना।
3: जरूर आता, पर अभी तो मुझे अपने भोलेनाथ के धाम जाना है, अमरनाथ।
5: अरे घूमने जा रहे हो?
3: नहीं नहीं, अरे तुम भी आओ ना, हनीमून के बाद वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव।
6: प्यार कोई सीजन सेल नहीं जिसमें स्टार कंडीशंस अप्लाई लगता हो। प्यार कोई म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस भी नहीं जिसे लेने से पहले रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़े। प्यार तो अनकंडीशनल होता है बिड़ू, और होना भी चाहिए। जिसने पैसों को सलाम और प्यार को बेनाम किया, उसने जिंदगी में सबसे बुरा काम किया। भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी भी नहीं कि तू प्यार भूल जाए। शिव खुल के प्यार करना सिखाता है, शिव बेपरवाह प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा
7: शिवा
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: एक

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। देह व्यापार में शामिल 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का लगा आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चयनित रितेश को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिले में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मीरगंज बाईपास एवं गोपालगंज बाईपास निर्माण कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में कार्यों में अपेक्षित तेजी नहीं होने तथा विभिन्न स्तरों पर हो रही देरी को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार गोपालगंज बाईपास परियोजना की कुल लंबाई 12.60 किलोमीटर है। परियोजना का कार्य 3 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया था तथा इसके पूर्ण होने की संभावित तिथि 2 अप्रैल 2027 निर्धारित है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया तथा वन स्वीकृति की कार्रवाई भी दर्ज है। वहीं मीरगंज बाईपास निर्माण परियोजना के संबंध में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त 2026 को जन सुनवाई निर्धारित किए जाने का उल्लेख भी परियोजना प्रतिवेदन में किया गया है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण, स्वीकृति एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़क एवं बाईपास परियोजना में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीरगंज के खाना खजाना में देह व्यापार का एक भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस ने 2 दिन पहले यहां छापेमारी की थी, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खाना खजाना रेस्टोरेंट के पास छापेमारी की गई थी। इस दौरान रेस्टोरेंट की तलाशी ली गई तो इसमें रेस्टोरेंट का संचालक मौके पर उपस्थित नहीं मिला और रेस्टोरेंट के दो स्टाफ विशाल कुमार गुप्ता जो महैचा थाना हथुआ का निवासी है और मुकेश कुमार यह सिवान के बसंतपुर थाना के तेलिया गांव का रहने वाला है। इसको पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू किया और रेस्टोरेंट के केबिन इत्यादि की जब तलाशी ली गई तो केबिन से दो महिला और एक पुरुष सहित कुल तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान केबिन से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने दो महिला और एक पुरुष को बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया और इस रेस्टोरेंट संचालकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें विशाल और मुकेश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही रेस्टोरेंट में हो रहे अनैतिक देह व्यापार में शामिल अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग पुलिस के आने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इसमें आवश्यक जाँच पड़ताल कर रही है। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज बैठक की गई। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए लगातार बैठकें करते हुए रणनीति बनाई जा रही है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनूप कुमार उपाध्याय ने MACT वादों के चिन्हित करने एवं पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग संबंधित अग्रतर कार्रवाई को लेकर बीमा कंपनी के अधिवक्ता और दावाकर्ता के अधिवक्ता गणों के साथ बैठक की और इसमें उपस्थित प्रतिभागियों से न्यायालयों में लंबित MACT के निष्पादन योग्य संभावित वादों पर चर्चा की गई और इसकी एक सूची तैयार की गई तथा अगली बैठक में उक्त वादों पर पक्षकारों एवं बीमा कंपनी से वार्ता कर वादों को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय टीम में शामिल होने वाले रितेश कुमार को आज जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि रितेश कुमार प्रभात का 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार की टीम में चयन हुआ है। ये बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेहतर प्रदर्शन के बाद राज्य टीम में इनका चयन हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में बुलाकर रितेश को सम्मानित किया और बधाई दी। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रितेश की उपलब्धि से जिले में हर्ष की बात बताई। साथ ही उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया और उन्होंने कहा कि रितेश की उपलब्धि से नए खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग मिलकर जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे। सासामुसा चीनी मिल के मामले में कोलकाता के NCLT में सुनवाई पूरी हो गई है। पीठ ने सभी पक्षों की बात को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। चीनी मिल को दोबारा चलाने और किसानों के बकाए तथा मिल के पुराने मालिकों की हिस्सेदारी से जुड़े मामलों में यहां पक्ष रखा गया है। गन्ना उद्योग विभाग की ओर से भी ऑस्ट्रेलिया बेस कंपनी BTL ग्रुप को चीनी मिल चलाने के लिए सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के आधार पर NCLT में पक्ष रखा गया। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर देवव्रत कुमार और BTL कंपनी के प्रतिनिधि SP मिश्रा ने NCLT में चीनी मिल को चलाने के लिए अपनी बात रखी और मिल को दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की भी अपील की। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद और मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी राम मिलन शाह को पुलिस ने आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह आरोपी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन बच्चों की मां ने थाने में आवेदन देकर ससुर समेत चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर तीन दिनों से महिला के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुड़ी है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने एक महीनों के अंदर 850 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 569 लोग जेल भी भेजे गए। हत्याकांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो वहीं हत्या के प्रयास में 11 लोग पकड़े गए। इसी तरह लूट के मामले में 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो वहीं डकैती के मामले में 1 लोग और पॉक्सो एक्ट में तथा अनुसूचित जाति जनजाति में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने 35 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नया टोला रजोखर बांध पर गिरफ्तार हुआ। इसके पास से 36 लीटर शराब मिली। आरोपी का नाम मिंटू कुमार सिंह है, जो रजोखर नवादा के ही विनोद सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके शराब और वाहन को जब्त किया गया है। हरियाली अमावस्या वर्षा ऋतु का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो हरियाली, समृद्धि और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा मुख्यालय पटना के साथ साथ कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र बक्सर में भी वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा। इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों को सतत भविष्य के लिए हरित संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। देह व्यापार में शामिल दो आरोपियों को भेजा गया जेल। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का लगा आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चयनित रितेश को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797006575।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-7-14-86-164।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

अरे नादान दीवाने, तरस खा जिंदगानी पर, अरे नादान परवाने, रहम था नौजवानी पर, ना ले तू नाम लैला का, नहीं तो जान जाएगी।

0: लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जल स्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने रहने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव। 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही।

0: सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6252 6112 पे।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने नीट यूजी 2026 में अनियमितता और गड़बड़ी के मामले में 2 मेडिकल छात्रों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आज आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। सांध्यकालीन समाचार बुलेटिन का प्रसारण शाम 6:35 से किया जाएगा। वहीं जिले की हलचल का प्रसारण 6:52 से होगा। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। परेड में बिहार पुलिस, CRPF, ITBP, BMP, होमगार्ड, NCC और भारत स्काउट्स एंड गाइड के जवान भाग लेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से 13 झांकियां निकाली जाएंगी। इन झांकियों में पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल खेती, आपदा प्रबंधन और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। समारोह को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। CCTV कैमरे से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अभियान के तहत तिरंगा रैलियों और वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में आज तिरंगा रैली निकाली जाएगी। रैली में जिले के प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। वहीं भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में वरिष्ठ पदाधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कहलगांव में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामपुर पंचायत में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों और जीविका परियोजना अंतर्गत संचालित विभिन्न समूहों द्वारा तिरंगा यात्रा तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारा को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन की पीड़ा और विस्थापन झेलने वाले लाखों भारतीय परिवारों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना को आधुनिक और वैश्विक स्तर के शहर के रूप में विकसित करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। पटना में विभिन्न भूमि खंडों के पुनर्विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पटना के सुनियोजित विकास और सरकारी भूमि को बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। इस दौरान बिहार संग्रहालय, नेहरू पथ के सामने गर्दनीबाग, भूतनाथ सेक्टर 6 और बोरिंग कैनाल रोड स्थित भूखंड के पुनर्विकास के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम NBCC ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। साथ ही गया, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा जैसे शहरों में भी उपयुक्त सरकारी भूमि को चिन्हित कर विकास की समेकित योजना तैयार करने पर सहमति बनी। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण से पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
2: कोई जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसका व्यापक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उस जमीन पर ये पूरे भारत सरकार के द्वारा, कई राज्य सरकारों के द्वारा NBCC के माध्यम से रीडेवलपमेंट का कार्य करवाया जाता है। उसी में NBCC का एक प्रस्ताव आया कि पटना में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाए। निर्माण में सरकार की कोई राशि खर्च नहीं होगी, निर्माण NBCC द्वारा कराया जाएगा, उस मानक पर कराया जाएगा और जो WTCA का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के जो औपचारिकताएं हैं उसको भी NBCC ही पूरा करेगी। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का केंद्र हमारा पटना हो सकेगा डब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बन जाने से।
0: राज्य सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति का पुनर्गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सचिव समिति मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं राज्य के विकास आयुक्त और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में सीवान, सारण, मुंगेर, मिथिला और मोतिहारी में विशेष मत्स्य क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। 8 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से 1,848 हेक्टेयर के अधिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्षेत्र और 9,357 हेक्टेयर के परियोजना प्रभाव क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 50,200 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2030 से बिहार को अग्रणी अंतरदेशीय मत्स्य राज्य बनाने की दिशा में गति मिलेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने नीट UG 2026 की परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी करने के आरोप में 2 मेडिकल छात्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने लखीसराय के 3 केंद्रों पर हुई धांधली के मुख्य सरगना डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट, उसके भाई अश्विनी कुमार और 3 मई को रद्द हुई नीट परीक्षा से जुड़े मामले के आरोपी मेडिकल छात्र उज्ज्वल राज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रविशंकर और उज्ज्वल राज नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में MBBS अंतिम वर्ष के छात्र हैं। इनकी गिरफ्तारी अलग अलग दिन पटना के जक्कनपुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर से हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों MBBS अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए संचालित 3rd वर्ष की पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्र पर पहुंचे थे। बाद में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर EOU ने पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में खाद कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री करने के मामले में 58 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पटना स्थित कृषि भवन में खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में अनियमितता के मामले में 294 उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कल से नई रेफरल नीति लागू होगी। प्रारंभिक चरण में इसे जिला अस्पतालों में लागू किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय अस्पतालों को भी मरीज को बड़े अस्पतालों में रेफर करने से पहले तय मानक पूरे करने होंगे। सभी जिला अस्पतालों के गहन चिकित्सा इकाई को सक्रिय कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य के 38 जिलों में 36 में जिला अस्पताल संचालित हैं। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में कल शाम हुई अच्छी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 14 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के अंडर 23 पुरुष फॉयल टीम स्पर्धा में राज्य के तुषार ने कांस्य पदक जीता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत तुषार को पिछले वर्ष नौकरी दी थी। पुणे में खेली जा रही 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में बिहार और उत्तराखंड के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। बिहार की टीम को टूर्नामेंट के पहले मैच में कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा था। टीम 2 लीग मैचों में गोवा और तमिलनाडु से खेलेगी। अररिया जिले के फारबिसगंज में बुनियाद केंद्र में अंतर पीढ़ीकरण सह संवेदीकरण और अटल वयो अभ्युदय योजना के कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिक और लाभार्थी शामिल हुए। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास उत्पाद विभाग ने 332 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, भरत तिवारी के परिवार से एक को नौकरी देंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, लोकसभा के मानसून सत्र में बिना चर्चा के पास हुए 11 विधेयक। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना एम्स में पहली बार जीवित डोनर से किया गया लिवर ट्रांसप्लांट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चांद नहीं दिखा ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त को। आज अखबार लिखता है, TRE4 में शामिल होंगे STET अभ्यर्थी भी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने नीट यूजी 2026 में अनियमितता और गड़बड़ी के मामले में 2 मेडिकल छात्रों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अररिया जिले के फॉरबिसगंज में बुनियाद केंद्र में अंतर पीढ़ीकरण सह संवेदीकरण और अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिक और लाभार्थी शामिल हुए।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
17: कॉल करे 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
18: Now pick it up,
19: hello.
18: Now pick your phone up,
19: hello.
18: Pick it up,
19: hello.
18: Now pick your phone up,
19: hello.
4: जब फोन के घंटे बजते
19: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
20: जी नमस्ते। हेलो
21: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
20: नमस्ते।
21: नमस्ते,
20: मनोरमा जी बोल रहे हैं ना?
21: जी जी
20: जी। गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा जिला गुना।
21: जी कैसे हैं गोपाल जी?
20: बढ़िया हैं। और क्या है, स्थिति कल और आज तो थोड़ी धूप सी निकल रही।
21: धूप तो बहुत है।
20: और क्या आपका कार्यक्रम सुनते हैं? और बिहार का मौसम कैसा है उधर का?
21: उधर का मौसम धूप निकला हुआ है
20: जी। और क्या, और आपके कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम सुनते रहते हैं हम तो आपके कार्यक्रम। जी तो गाना सुनना है?
21: बता दीजिए।
20: सुनना है माँ फिल्म का, सुनना है बरसात में जब आएगा सावन का महीना, ये वाला।
21: वैसे अपना नाम?
20: और का फिल्म पिक्चर का नाम?
21: जी
20: माँ फिल्म है वो जीतेंद्र की।
21: ओके, वैसे आपका नाम?
20: गोपाल ओझा, ककवासा गांव से।
21: और ये गाना जो है आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
20: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, हम मधुसूदन गढ़ से।
21: तो आप ये रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
20: मोबाइल ऐप से सुनते हैं।
21: मतलब कितने समय से सुनते आ गए?
20: तो गए 4-5 महीने हुए।
21: अच्छा, तो कैसे पता चला आपको रेडियो रिमझिम के बारे में?
20: जी मान लीजिए उसमें ऐप डाउनलोड किया है तो उसमें निकल आया तो हमने सुन लिया, उसको चलाते हैं।
21: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
20: बढ़िया लगता है रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम, तो हमारे दोस्त भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं कार्यक्रम।
21: ठीक है गोपाल जी, तो गाना फिर सुनते हैं।
20: जी
21: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
20: तब तक आएगा जी,
21: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
20: ठीक है।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: विकास कुमार हिमता फिर से।
1: जी जी, कैसे हैं विकास जी?
0: बढ़िया है जी। हम सोचे कि आप नाराज हो गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे।
1: नहीं नहीं भला, मैं क्यों नाराज होंगी?
0: मैं यही सोचा कि नाराज हो गए होंगे मैडम, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे।
1: नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है।
0: और बताइए मैडम, क्या हाल चाल है?
1: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं अभी?
1: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
0: धूप उप निकल रहा है कि बारिश और इसका मौसम है गोपालगंज में?
1: धूप तो निकला हुआ है।
0: चलिए बढ़िया है, इधर भी बहुत धूप तेज निकला है।
1: अच्छा,
0: बहुत जल्दी आना है गोपालगंज में।
1: अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ
0: हैं? अभी तो हम दिल्ली में हैं।
1: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाजियाबाद में, यहाँ मशीन वशीन चलाते हैं। राइस मिल का रोला बनता है, राइस मिल का रबर रोला, रबर रोल, वो जो चावल नहीं बनता है चावल
1: जी जी,
0: वो राइस मिल का जो राइस मिल में लगता है।
1: अच्छा,
0: उसी में मेरा कंपनी में वही तैयार होता है राइस मिल का।
1: अच्छा अच्छा,
0: मेरे बगल में एक कंपनी था वो जिसमें से कार्टून आता था। कल परसों इतना दर्दनाक घटना हो गया मैडम, क्या बताए, उसमें आग लग गया।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: गत्ता वाली कंपनी थी, उसमें आग लग गया, उसमें 2-3 लेडीजे हवाई हो गई, एकदम जल गई। बहुत हम लोग का वो कला लग रहा था, उसमें से हम लोग का कार्टून वार्टून आता है ना पेको करने के लिए माल, हम लोग गए थे देखने के लिए 1 घंटा काम बंद करके। इसी टाइम लगा था 10-11 बजे था, तो बुझाने वाला गाड़ी आया था बाहर से, बुझा उजा करके चला गया, उन लोग का हॉस्पिटल ले जा करके भर्ती करा दिया। तो अभी सही है, अभी वो लेडीज जो सही है।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, भगवान करे कि सही है। तो
0: आज का मौसम बहुत खराब है मैडम, आज बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: हाँ, बहुत गर्मी है
0: आज तो, हमारे ख्याल से 40-42 का आप है, 40-38-38-37 का आप
1: उतना ही है।
0: हाँ,
1: क्या ही कर सकते हैं।
0: हाँ वही तो।
1: चलिए कोई ना, आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: मेरा आज का फरमाइश है वो देशभक्ति का।
1: कौन सा?
0: मेरे वरन के लोगो जरा याद करो कुर्बानी, यही वाली।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: सबसे पहले आप जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं को, मेरे हिमतापुर में जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको, अपने बच्चे के लिए।
1: ओके,
0: दो लड़की है।
1: जी जी,
0: मेरे दो लड़की है, एक खुशी है, एक अमिता है, एक मेरे लड़का सूर्या कुमार गुप्ता। ये तीनों अम्बी को हम सुनवाने चाहते हैं।
1: ठीक है विकास जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, ओके
1: जी,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चल

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसी हैं मैम?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ मैम।
2: बढ़िया।
0: आज सुना दीजिए, 1976 माई की संतान फिल्म जितेंद्र और रेखा के गीत सुना दीजिए। गीत के बोल हैं
1: जी, बच्चे बताइए
0: जी, गीत के बोल हैं, पप्पू की मम्मी तो बड़ी निकम्मी, करे जान को बच्चे रोते हैं तो खेले रम्मी। हेलो
1: जी, जी एक बार और बता दीजिए आवाज का।
0: जी गीत के बोल हैं, पप्पू की मम्मी तो बड़ी निकम्मी, तेरे जान को बच्चे रोते हैं तो खेले रम्मी।
1: ओके, वैसे आपका नाम?
0: मेरा नाम है सुधीर कुलकर्णी, जुम्बा जिला देवघर, झारखंड से।
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बढ़िया।
0: और गीत पूरा बजाइएगा मैम, बीच में कभी काट देते हैं तो गीत का किरकिरा हो जाता है, मजा ही खत्म हो जाता है।
1: जी जी, वो लंबा हो जाता है ना, तो
0: जी जी थोड़ा पूरा बजाने का गीत का कोशिश कीजिएगा।
1: जी जी पूरा कोशिश।
0: और डेडिकेट रहेगा सबसे पहले हम आपको, रेडियो रिम के जितने लिसनर हैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं, रोहित कुमार सिंह है, राजीव रोशन है, मदन कौल है, प्रभु कौल है, राजकुमारी कमली कौल, जुगल कौल, इन सब सारे साथ में डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: वैसे मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम अभी धूप दे रही है मैम, कड़ाके की धूप दे रही है, जो खेत रोपे हैं वो सब सूख रही है, पंप से या मोटर से सिंचाई करना पड़ रहा है, इस साल खेती की स्थिति बहुत दयनीय है झारखण्ड में।
1: इधर भी वही हाल है।
0: जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम प्ले कीजिए।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: कहां से ले दूं।
1: नंगे पांव मेरे कोई चोट नहीं है, इधर तो देखो दे।

0: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 FM में।
0: कैसे हैं मैम?
1: जी बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
0: हम भी ठीक हैं।
1: सब क्या हो रहा है?
0: अभी तो आपके पास कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो खाना वाना हो गया आपका?
0: हाँ हो गया आपका?
1: जी अभी
0: तो मौसम कैसा है?
1: मौसम धूप तो निकला हुआ है बहुत तेज।
0: आज बहुत अच्छा सा दिन हुआ है।
1: जी तो
0: सब ठीक है। और सब बताइए।
1: जी सब बढ़िया है। वैसे आपका नाम?
0: मनीषा कुमारी, तरह सुंदर।

0: ये बहुत अच्छी की बात है।
1: मोबाइल नहीं है, छोटा वाला मोबाइल है। नहीं,
0: अच्छा तो मतलब आप छोटा वाला मोबाइल से सुनती हैं।
1: छोटा वाला मोबाइल है तो इस बार नहीं सुनाई देगा। कह रहे हाँ रेडियो से सुनती हूँ, रेडियो खराब हो जाता है तो बनता है फिर से सुनते हैं।
0: अच्छा कोई बात नहीं, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम रेडियो रिंगिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बाय मैम।
0: बाय।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।

0: टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्कार,
8: जी बढ़िया वाली, आपन बताए रोगा कैसा वाली? सब क्या होता
9: है? बहुत ज्यादा घाम बैठो खड़ा कर।
8: घाम तो बहुत
9: पेड़ के नीचे नाश्ता बंद हो गयी
8: रही
9: ना? हाँ कहीं बैठनी हो गया।
8: चलिए बढ़िया बात है, वैसे आपका नाम बता दी।
9: नाम तो राकेश भक्ति बक्सर
8: जी,
9: बक्सर से राकेश भक्ति।
8: आवाज सही नहीं किया, एक बार फिर बता दी।
9: बक्सर से राकेश भारती।
8: अच्छा बता दी, कौन गाना सुनेगा?
9: भारती जी बोल रहे हैं, सुनी जी?
8: नहीं, मैं मनोरमा।
9: अच्छा अच्छा, मैं आपका दूसरा, आपके बाद दूसरा बात हो रहा है
8: जी।
9: दूसरा बार आपसे बात हो गया
8: जी। जी तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
9: गाना था पवन सिंह का सनेहिया लगावल बहुत।
8: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
9: गाना तो गा नहीं सकते है इसलिए की आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है।
8: कोई बात नहीं है, पर ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
9: फिलहाल फैमिली है, हम है और यहाँ पे 10 लोग जो है दादा जी पप्पू जी सब बैठे हैं।
8: ठीक है तो आपका गाना प्ले करते हैं।
9: बहुत बहुत धन्यवाद
8: रेडियो 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बोलवा टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बुलो राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बुलो राजा गाना बाबा धाम का नाम का
1: कौन सा? आवाज कट के आ रही है।
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: दे घर बाबा के। बुलो राजा कौन गाना बताइए, नाव का गाना बताइए ना।
1: अच्छा ठीक है,
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: बहुत स्वागत है प्रिय रंजीत 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैडम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: और क्या हाल है
1: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
0: अपना भी बढ़िया है। हम रहमत अंसारी पिंपरिया से बोल रहे हैं।
1: जी जी, कहाँ से?
0: पिंपरिया से।
1: ये कहाँ पड़ता है?
0: बस आपके जलालपुर के बगल में।
1: अच्छा,
0: चायपुर जलालपुर, उसके बाद पिंपरिया पड़ जाता है। तो मौसम कैसा हो रहा है मैडम?
1: इधर का मौसम धूप तो निकला हुआ है।
0: धूप निकला हुआ है तो मैं कश्मीर में हूँ, काम करता हूँ।
1: कश्मीर में तो ठंडा पड़ रहा होगा?
0: जी हाँ, यहाँ तो ठंडा पड़ रहा है। जी जी, इस टाइम में आदमी कम्बल ओढ़ के सोता है। हमको एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए।
0: गाने का बोल है, राजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल दे करा रहे हैं। और ये गाना भी मैं रेडियो सुनने वाली सोता है, आप सबको सुनवाना चाहता हूँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम
0: में। दिल से धन्यवाद है भारती जी, बहुत बहुत नहीं कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मैं भी बैठा हूँ, मैं रामविलास अटवा बोल रहा हूँ, बिल्कुल बगहा पूर्वी चंपारण।
1: कहाँ से?
0: बिल्कुल बगहा पूर्वी चंपारण।
1: अच्छा,
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: मौसम तो अभी धूप निकला हुआ है
0: जी, हमारे यहाँ तो बहुत अधिक गर्मी है, गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। आप भी इंद्र भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि बारिश हो जाए।
1: जी जी बिल्कुल, हमारे तरफ भी बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, गर्मी भी बहुत है।
0: मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, बहुत अधिक गर्मी पड़ गई जी। तो आज गाना सुना दीजिए, गम का नाम है गिरफ्तार, और गाने का बोले धूप में निकला ना करो रूप जाने कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं
0: जी? सबसे पहले तो भारती जी आपको सुनाना चाहते, दूसरे हो गए संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, कंसराज यादव जी, मंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगला प्रसाद कुशवाहा जी, नंदन प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू कुमार, आयुष कुमार, आधार कुमार, बौली प्रसाद कुशवाहा जी, जतुंदा प्रसाद कुशवाहा जी, नरेश सहनी जी, और गोपाल में जीते गए तंत्रा कुशवाहा जी, काजल जी, कुरिया जी, नेहा जी, मुकान जी, गीता गुप्ता जी, मोहन जी, नवीन सिंह जी, सिकंदर जश्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तो आप खजाना प्ले करते हैं?
0: धन्यवाद,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: Hello. हेलो
8: हेलो सलाम नमस्कार मैम।
7: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
9: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
8: जी मैम कैसे हैं?
7: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
8: जी हम भी अच्छा है मैम। दो दो नंबर पर लगा रहे थे कि अब लग जाए, 12 मिनट तो लगाए तो अब लगा। राइट 11 बजे से लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था, बिजी आ रहा
7: था। टाइम से सब कोई कॉल करने लग जाता है, हेलो,
8: इसलिए बहुत मेहनत करके लगता है इसमें कॉल।
7: वो तो है।
8: चलिए आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो गई। आपका मतलब आप चलाती हैं तो अच्छा लगता है, आप ही चलाइए ये वाला शो।
7: अच्छा जी।
8: अब आपका अंदाज मतलब पुराना जैसा हो गया है।
7: अच्छा।
8: भारती मैम को उस शो में रखिए और आप इस शो में रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा।
7: जी
8: मैम, तो अच्छा लगेगा, सभी लोगों को उम्मीद करते हैं।
7: तो ऐसे आपका नाम?
8: जी हम तो बहुत पुराने हैं, मतलब सरोजाली बोल रहे हैं गोपालगंज से। दो दो कॉल किए हैं लेकिन एक ही बजा है मैम।
7: बहुत सारे कॉल अभी बाकी हैं तो कुछ आज बजेंगे।
8: जी मैम, वो मंडे वाला बाकी है अभी।
7: मंडे वाला भारती की रिकॉर्डिंग?
8: हाँ हाँ, भारती मैम का बाकी है।
7: जी जी अभी कुछ बाकी है।
8: हमको मंडे का बात हुआ था लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है फरमाइश।
7: जी जी, तो वही ना, आज मतलब आज प्ले होगा, अभी बहुत सारे कॉल बाकी हैं।
8: हाँ मैम, तो आज मुझे वादा मूवी से गाना सुनना है। गाने का बोल बताए?
7: जी बिल्कुल,
8: गाने का बोल है मैं दीवाना ऐसे कुछ गाना है। उदित नारायण का आवाज है। आप सभी के साथ ये गाना सुनना है, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा गाना है।
7: और ये गाना डेडिकेट
8: है सभी सुनने वालों को हमारे तरफ से, जितने भी दोस्त हैं और आपको, भारती मैम को।
7: ओके
8: जी मैम, तो कब बजेगा ये वाला?
7: ये गाना आपका कल बजेगा,
8: कल। आपका तो आज शो नहीं चलेगा?
7: नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉल्स बाकी हैं तो अभी भारती जी वाला चलेगा।
8: चलिए, आपका शो का बहुत मतलब इंतजार रहेगा हमको।
7: जी जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश रहेगा कि आज ही बज जाए।
8: जी मैम, और एडवांस में धन्यवाद।
7: तो रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
8: बाय मैम।
7: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: और आपने सुना
1: जी? सब बढ़िया, बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छा।
1: क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, खाना पीना हो गया।
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: हाँ हो गया।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: भूल भाव का गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: औखी तारीख के।
1: कोई भी?
0: हाँ कोई भी, भूल भाव के गाना।
1: अच्छा,
0: कब तक बजेगा मैम
1: ये गाना? कल बजेगा, मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे। अगर आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का बजेगा।
0: ठीक है। और सब सुना है?
1: जी सब बढ़िया। आपके घर परिवार में सब कोई बढ़िया?
0: सब कोई बात है।
1: चलिए अच्छे की बात है। तो आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं?
0: हाँ मोबाइल के जरिए, मोबाइल से रेडियो बहुत दिन से मैं सुनती हूँ। जब शादी नहीं हुआ तब से मैं रेडियो रिंगटोन सुनती हूँ।
1: अच्छा जी, कैसा लगा आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत लगता है।
1: अच्छा अच्छा, कौन सा कार्यक्रम लगता है आपको इसमें?
0: तो सब कार्यक्रम अच्छा लगता है, सब हम सुबह से लेकर रात तक।
1: अच्छा जी
0: जी,
1: अच्छी बात है। ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: हाँ, सबसे पहले आपको जितना रेट सबको, मेरे बच्चा लो है तीनों, मेरे हस्बैंड।
1: तो गाना प्ले करते हैं आपका?
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 FM में।
1: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए।
0: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
1: बढ़िया हैं, रेडियो रिंकिम परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
0: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
1: आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है,
1: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
0: जी जी, तो है।
1: तो ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
0: जी जी, पहला ही कॉल।
1: जी सर, गाना सुना दीजिए, गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: आग और 16 मूवी का। आज सुबह जब

0: लगाना मैडम।
1: ओके और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजन सुनने वाले श्रोताओं हैं सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
1: तो ये आप रेडियो रेंजन को कैसे सुनते हैं?
0: मोबाइल से सुनते हैं,
1: मोबाइल ऐप के जरिए।
0: ऐप के जरिए? हाँ, और रेडियो हम लोग का सब थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
1: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: हम थनाओ थाना नासिकगंज जिला रोहतास बिहार से, जिला रोहतास हम लोग हैं।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी
1: जी। रेडियो रेंजन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। अगर सब उधर के मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, अगर होता है कि नहीं बरसात?
1: तो बहुत है, धूप भी निकला हुआ है।
0: जी जी, हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था, लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था, लेकिन फिर भी कह रहे थे मतलब क्या है की थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा, लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। प्रकृति के नियम है, चलता रहता है। आज गाना सुना दीजिए,
1: बता दीजिए।

0: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
1: जी जी चलिए आप कहती है तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं, लेकिन हम लोग तो गाते आना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से आप लोग उतने में सरल हो। सबसे तो पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, सबसे पहले आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया शिकारा से मामा साबी जी, कुशवाहा जी, सोहनी, दीपक दास, जयभान ठाकरे, जूनिया साहब, धर्मेंद्र यादव उर्फ मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, मदन राम भैरवगंजी, भैरवगंशे, राजेंद्र यादव भाटी, सतलाल गौतम, उत्तर प्रदेश बहुत से सलार अंसारी, मोहम्मद सलार अंसारी बजवलिया का विशेष उनको, संदिका शाह अशोक, हरिंद्र प्रसाद यादव मिकुटा, कौशल किशोर प्रसाद, जितेंद्र सर समर्थन, नीरज गुप्ता, सुरोज श्रीवास्तव, हमारे नाम से देने पर तमाम उसको सुनाते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: Pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
0: जी गाना सुनना चाह रहा हूँ।
1: जी गाना सुनवाएंगे। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम का नाम का
1: कौन सा? आवाज कट के आ रही है।
0: बाबा धाम के गाना,
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बूढ़े राजा कौन गाना बजाई? नाव का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में?
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाइए।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है?
0: जी।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी थैंक यू। हम कैसी हैं?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: कासम से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी, यही गाना।
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: जी
1: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगटोन सुनते हैं सभी को।
1: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐसे सुनती हूँ।
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की है?
0: जी।
1: ये बढ़िया। मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगटोन का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो रिंगटोन?
0: हेलो माय चॉइस और क्रिसमस फरमाइश।
1: अच्छा जी। चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-11। जी हाँ, 80-029-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: नमस्ते मैम।
8: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: से बोल रहे हैं हमारी प्रसाद
8: जी। जी, क्या हाल चाल बराबर?
9: हाल चाल तो ये भाई, धूप का लोभ हो रहे आयु भर, अब यहाँ दही जोर के आगे हो जाए।
8: हाँ, धूप तो बहुत हुआ।
9: गाना सुने बा, टिकट दोपहरी में गोया बाजार लारा में गोया बाजार ला, तुम हमके ले लो गोदिया उठाए मोरे मिटवा, सुनाई रहो?
8: जी जी, एक बार गा के बता सको?
9: टिकट दोपहरी में गोरा बाजार लारा में गोरा बजरेला हमके ले लो गोदिया उठाए मोरे मितवा।
8: और ये गाना रुआ के समाल के भी चाहता नहीं
9: सब कुछ सुने हम रुआ रेडियो जितना लोग सुनता सब कुछ सुने धना वाला भाई बड़ा वो सुनियन का ही पहले बड़ा याद कर लो हमार नाम याद नॉन कर चल फोन आए उनका तो याद ना कर लेंगे
8: रेडियो और इन सिंह के कैसे सुने
9: रेडियो से
8: रेडियो से चालू बढ़िया खाना ना हो गई बेरा वो
9: हाँ तो खाना तो हमने क्या 8-9 बजे हो जाएगा
8: बढ़िया बात ठीक बात करा गाना प्ले करो तनी
9: नमस्ते
8: नमस्ते सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
0: जी। गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी। गाना सुनाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
1: अच्छा,
0: गाना सुनना है बुलो राजा के बाबा धाम का गाना।
1: जी बता दीजिए।
0: बुलो राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
1: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
0: बाबा धाम के गाना।
1: गाने के बोल
0: देवघर बाबा के। बुलो राजा कौन गाना बजाई? नाम का गाना बजाई ना।
1: अच्छा ठीक है,
0: बाबा धाम गाना बोलूंगा ना।
1: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
0: भोजपुरी में बजाई।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो झेम 90.4 FM पे। समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो अभी आप टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय कैसे हैं, ठीक है ना, मुझे एक गाना सुनना है। और शम का बोल है बस इतना करी राम जी दिल लागे ना अब केहू और से। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस मैसेज को करने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए हैं, तो अपना नाम ज़रूर बताएं। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप जब भी मैसेज करें तो आप नाम पता के साथ मैसेज करें ताकि आपकी पहचान हो सके और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो सके। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है कौन कहते हैं भगवान होते नहीं। मेरा नाम सत्यम है श्यामपुर से और कल मेरा गाना नहीं बजाए थे, कृपया गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए आज आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज देख ले, फिर आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो भैया नमस्ते, अमली नवसाद दरभंगा भाजीतपुर से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है कव्वाली। तो कव्वाली आपसे क्षमा चाहेंगे, आप कव्वाली की फरमाइश ना करें क्योंकि कव्वाली बहुत लंबे समय का होता है और कव्वाली हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और यह कार्यक्रम बहुत कम समय का है तो हम कहते हैं कि साधारणतः गाने की फरमाइश करें तो बेहतर रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, हमें गाना सुना दीजिए, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। शुभम कुशवाहा बंजारी से जुड़े हुए हैं, यदि पुराने गाने होंगे तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि जीना पाई अगर साथ छूटी जाई हो, पवन सिंह का, लेकिन आप कौन, तो अपना तो नाम बताएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सत्यम जी की, श्यामपुर से मैसेज किए हुए हैं, सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

रेडियो रेम छीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग पुराने गाने की फरमाइश करें और साधारणतः गाने की फरमाइश करें और कवाली नात शरीफ और भजन निर्गुण की फरमाइश ना करें, क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है। आप लोग थोड़ा सा समझें। और देखिए अभी गाने जो हम सभी सुन रहे थे वो करीब 8:30 मिनट का है, तो इस गाने को हम आधे ही सुना पाएंगे और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है तो अगले गाने भी हम सभी सुनेंगे। आगे गाने के फरमाइश करती हैं रेखा जी और कहती हैं, सुनो जी मैं कल से लाइन में हूं और मैं रेखा पांडे हर सरिया वार्ड नंबर 5 से, तो आज मेरा गाना बिल्कुल प्ले कीजिएगा। गाना है रेखा जी का, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि धन्यवाद सर। चलिए आपको धन्यवाद है सत्यम जी। और आगे से ध्यान रखिएगा कि साधारणतः गाने की फरमाइश करिएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है, हेलो प्रणाम सलाम मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया मस्का गांव प्रखंड से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, आज पहली बार दिल की बात की है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आधा ही सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया आप कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से और काफ़ी प्यारा सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू बाबू आपके व्हाट्सएप पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं पहली बार मैसेज किया हूँ, तो बिल्कुल यदि आपका मैसेज पहुंचा हुआ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं रेखा जी की और रेखा जी वाली गाने।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
2: मैं अपने देश का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही मैं हमेशा गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन यही अरमान रखता हूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ अपने गोपालगंज जिले के सांसद डॉक्टर अलोक कुमार सुमन जी सभी जिले वासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और आगे कहते

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाएंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं? और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ और आप सभी के बीच कोशिश करते हुए उपस्थित हूँ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे। सर जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करने वाले अपना नाम तो नहीं बताए हुए हैं, और सुजीत कुमार बस्तरा, राजा लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज और लिखा गया है कि हमारा गाना नहीं बजाएंगे क्या? तो आप कौन, अपना नाम तो बताएं, तभी तो आपके गाने हम बजाएं। आगे मैसेज और लिखा गया है कि सर हम भी हैं, तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to
1: टीम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और चलिए, बेवफा नहीं होना चाहिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि धन्यवाद सर जी आपको, भगवान जी आपको पूरी दुनिया की सारी खुशी दे। ओह चलिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू जी, मैं भी शो से जुड़ गई हूं और मुझे भी गाना सुनना है, और गाना सुना दीजिए। गाने का बोल है, जब से देखा तुझको हम तो खोए खोए रहते हैं। और इस मैसेज को करती हैं भारती। तो चलिए, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुजीत कुमार प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से। तो सुजीत जी, आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और आपकी भी फरमाइश तो पूरा करने की खुशी से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, वाह सुपर सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज लिखा गया है कि मैंने तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने की दुआ मांगी है, मैंने तो सिर्फ हर खुशी दुआ में तेरी ही वफा मांगी है। ये दुनिया लाख जले हमारी मोहब्बत से, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने की सजा मांगी। सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, जुड़ गए हैं तो बिल्कुल बन रहे हमारे साथ। और कहते हैं कि प्यार में नेकी बेवफा सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मत करो गुरूर अपनी मोहब्बत पर, ना जाने कब वो अपना रंग दिखाएगा, जिसके खातिर तुम लड़ोगे अपने से, वही एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। सुपर सैड सॉन्ग। और मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे MD97 दरभंगा भजीतपुर से किए हुए हैं, और गाने का बोल देते हैं, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी

0: सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग हो, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और इस मैसेज को करती हैं निशा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आखिरी बार पूछ रही हूँ, बजाइएगा कि नहीं। यदि आप परिचय देती हैं तो बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भैया मुझे मेरा गाना सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। नौसाद जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? आज मेरे लड़के विकास गुप्ता का सालगिरह है, तो आज हमारे ऑल फैमिली और सभी साथियों के द्वारा घर पर ही आशीर्वाद देने के लिए और गॉड से इनके हर कामनाएं की दुआ मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बर्थडे का सॉन्ग सुना दे मैडम जी के फरमाइश पर। और फिल्म आप आए बाहर आए, गीत तारे तारे नील गगन पे तारे, डेडिकेट हमारे सभी सखियों सहेलियों को और सभी सुंदर सभी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम ले करेंगे। लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रोकसाल नेपाल बॉर्डर से आप दोनों की फरमाइश से तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा गाना कब बजेगा? बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा, फिलहाल गाने को एंजॉय करें।

टुडे रिम छीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे लिखा गया है कि तोहफे में चांद दूं या सितारे, जन्मदिन पर ऐसा क्या दूं ये मुझसे पूछे सारे, अगर जिंदगी तुम्हारे नाम करूं तो वो भी कम है तुम्हारी, झोली में भर दूं हर पल खुशियों में तुम्हारे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रिया सोनम बाबू बर्थडे सॉन्ग सुनाने के लिए, पर लेट है। चलिए क्या करें, कई मैसेज पहुंचे हुए रहते हैं। चलिए हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे करती हैं भारती, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे, डेडिकेट पूरे ऑल लिसनर को।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश कब से लाइन में लगा हुआ है, और इन्होंने पर्चे नहीं दे रही थी जिसके कारण इनकी फरमाइश हम रुक के रखे हुए थे। सोनाली बिरवा से जुड़ी हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। गाने का बोल दिया गया है, बस इतने करी ये राम जी दिल लागे ना आपके हुगौर से। इसलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सॉन्ग प्ले किए इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दर्द को दर्द अब होने लगा है, दर्द अपने गम पे खुद रोने लगा है, अब हमें दर्द से दर्द नहीं लगेगा क्योंकि दर्द हमको छूकर खुद सोने लगा है। सुनो भाई नमस्कार, खोए खोए रहता हूँ सुपर सॉन्ग, और आप सभी को गुड नाइट। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी, बिल्कुल अभी एक और दो गाने सुनेंगे हम सभी, अभी बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि ओए होए ये बात है, खोए खोए जागे जागे सोए सोए रहते हैं, सुपर लाजवाब सॉन्ग। मिसेस करती हैं निशा भारती, और आगे बढ़ते हैं अगले गाने को हम प्ले करते हैं।

बिल्कुल नहीं लगेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि, और इस मैसेज को करती हैं भारती और लिखती हैं कि क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नई हवाओं की शोभात बिगाड़ देती है, बहुत तारों को खुली चाहत बिगाड़ देती है, बचा कर रखना मोहब्बत को, खैर से खुद को ये अच्छे अच्छों की हालात बिगाड़ देती है। सुपर लाजवाब भोजपुरी माई बेस्ट सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और इनके तरफ से गाने के फरमाइश दिया गया है तड़ी पार मूवी से। आज पहली बार दिल की बात की है तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा भी, तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे इसके बाद हो सके तो। और नहीं नहीं आज तो नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि यहाँ देखे तो समय 10:17 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, तो अंतिम गाना इन्हीं का रहेगा और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और आप सब जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की कमी है और हमारा जितना समय था उतना पूरा हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए और आप सब सुनते रहें रेडियो 96.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: गोपालगंज जिले के नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी के तरफ से आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे ये कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198869।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन।
6: जिला जदयू के अध्यक्ष श्री प्रमोद पटेल जी के तरफ से आप सभी समस्त जनता जनार्दन को 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका मानना है कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, तो बस जियो वतन के नाम पर।
7: तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-92। जी हाँ, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा लेट हूँ और यहाँ पे आप सभी के लिए जब तक हमारे सारे श्रोतागण जुड़ रहे हैं एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ। और गाने के बोल हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो चलिए इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, और लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जई छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गया हूँ, और मुझे भी गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, लिख रहा है मेरा मैसेज देखकर आप इग्नोर कर रही हैं क्या, कई हफ्तों से प्लीज़ मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के मैसेज शामिल करती हूँ, और शो भी आज लेट से ही शुरू हुआ है और अभी शुरुआत की हूँ। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय दी क्या हाल है, और करिश्मा कुमारी पीपर नारायण से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो क्लिक है, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज पहुंचा है जो क्लिक रहे हैं, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमारा भी गाना सुनना दीजिएगा। और गाने की लिंक बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैं चंद्रशेखर साहू ग्राम बिरई से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने के बोल हैं, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97070675।

छोटे से ब्रेक के बाद जो जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को और आगे की तरफ ले चलेंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हेलो गुड मॉर्निंग मिस, हाउ आर यू टुडे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए और मुझे, ताकि पता चले आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और आप बताइए आप कैसे हैं। हम सभी तो ठीक हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं आपके रेडियो रिमझिम से हेलो फरमाइश लाइव प्रसारण सप्ताह में किस दिन और कब होता है

0: एचएम हेलो माय चॉइस की रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपको सोमवार बुधवार और शुक्रवार को होती है और 11 बजे से लेकर 12:30 तक होती है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, मैं सऊदी अरब से मुस्तफ़ा जुड़ा हुआ हूँ और गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, आप मेरा गाना सुनाइए। प्रमोद कुमार साहू ग्राम भिरई जिला पलो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश आई हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो अच्छा मैम
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमचल 90.4 एफएम में।
1: हम खास वो दने रमेश प्रसाद आज दिन तो खूब बढ़िया भइल बा।
0: हाँ दिन अच्छा भइल बा आज।
1: हाँ तो अपना है
0: बता दी कौन सा गाना बता दी अच्छा भुला गए
1: अपना भी एसी वाला सावन के महीना पवन का रसूर
0: और गाना सुनाऊं के बाद
1: सब कुछ सुना था हम सुनने दे वो सुनने
0: चलिए फिर और गाना प्ले कर दे लेने सुनत रही रेडियो रूम से 90.4 एफएम में। नमस्ते
2: पवन कर शोर
3: पवन कर शोर,
2: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर
3: पवन कर शोर।

अभी हम लोग ने सुना रामा जी की तरफ से एक खूबसूरत सा गीत, सावन का महीना पवन करे सूर, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी 54 से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और आज का गाना बजा दीजिएगा वरना झगड़ा हो जाएगा आपसे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आज आपकी गाने की फरमाइश पूरी हो सकती है क्योंकि आज का एक हफ्ता पूरा हो गया है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, प्रणाम, सभी रेडियो रिमझिम साथी को नमस्कार प्रणाम, और मैं सुबोध साहू बेगूसराय से बोल रहा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है और गाने का लिंक भेज रहा हूँ, धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं मैम हमारा गाना सुना दीजिएगा प्लीज़, और हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमारा भी गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्रश्न मैसेज है, और भारती जी राम जी प्रसाद कल भी गाना बजा था और सोमवार को भी बजा था, हफ्ते में कितने दिन सुनते हैं आप बताइए ज़रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और किसका गाना बजा था और मुझे ये ज़रूर बताइए, मुझे नहीं मालूम कि किसका कल भी बजा था और सिर्फ सोमवार को भी बजा था। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं इस प्यार का अंदाज न जाने कैसा है, हम क्या बताएं ये राज कैसा है, कौन कहता है आप चांद जैसे हो, हम तो कहते हैं कि चांद खुद आप जैसा है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और लिख रहे हैं मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा देना, कैसी हो आप और ये भी बता देना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं अच्छी हूँ, और आपकी आप बताइए आप सब कैसे हैं, और शायरी बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि करण मुर्मूर हैदराबाद से, हम लोग हैदराबाद से छत के ऊपर ईंट जोड़ रहे हैं और एक गाना सुनना है, और गाना सुनना चाहते हैं दिव्या मैम फिल्म दिलजले से, और मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, और रिंटू चौधरी एमडी सिकंदर, और हम सब को गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनका गाना प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: ग्राम पंचायत राज गौसिया के मुखिया रागनी मिश्र, पुत्र वधु राधा रमन मिश्र, परमंडलीय संयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सारण के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी, मैं मैम जी, आज मेरा मेरे दिल के टुकड़े हैं और आयशा कुशवाहा पूरे 3 साल हो गया, और लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा और प्यार से भरी ज़िंदगी मिले आपको, खुशियों से भरे पल मिले आपको, कभी किसी गम का सामना ना करना पड़े ऐसा आने वाला कल मिले आपको, और जन्मदिन की मुबारकबाद और सूरज की किरणें तेज दे आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको, हम जो देंगे वो भी कम होंगे और देने वाले ज़िंदगी की हर खुशी दे आपको, जन्मदिन की मुबारकबाद। और लिख रहे हैं 2 लाइन है शामिल कर दीजिएगा, और मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से अभी दुबई से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ

0: ये लाइन अयंश कुशवाहा जी के लिए है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, आप मेरा गाना सुनाइए। प्रमोद कुमार साहू, ग्राम बिरई, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। जय हिंद और जय भारत। मेरे देश रंगीला रंगीला सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी और लिख रहे हैं, प्यार तो उसी दिन हो गया था जब बचपन में 15 अगस्त को निकलने वाली रैली में वो चिल्ला कर बोली, सर देखो ना ये लड़का मेरा हाथ पकड़ के नहीं चल रहा है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, मोस्ट वेलकम। और का हाल चाल बा, सनी शर्मा हम हूँ बानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, इससे पहले जो हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस वो चल रहा है, आप लोगों से बातें हो रही हैं। और क्या, आप बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: हम आपका शो सुन रहे थे, सोए थे।
0: अच्छा जी, तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: हमको आज थोड़ा कौन सिंह का गाना सुनना है जो
0: है। कौन सा, एक बार और बोल दीजिएगा। बात के कि बाप के?
1: बाप के।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: हाँ।
0: बता दीजिए।
1: सबसे पहले आपको और जितने लोग सुन रहे हैं रेडियो रिम जिम, उनको भी।
0: अच्छा जी, चलिए आपका गाना प्ले कर रहे हैं रेडियो रिम जिम 90.4 FM में। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

रहे थे खूबसूरत सा गीत पवन सिंह की आवाज़ में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, रेडियो रिमझिम से सुनील कुशवाहा एमपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं मैसेज पहुंचा हुआ है जो क्लिक है नमस्कार जी, आप अब मैं भी शो से जुड़ गया हूं, और मनोज शर्मा कररिया से, और मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा, और मेरा खांसी ठीक नहीं हो रहा है, अगर कोई डॉक्टर आपके रिमझिम रेडियो से जुड़े हैं तो कृपया उनसे मुझे जोड़ दीजिएगा ताकि मेरी खांसी ठीक हो सके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी बिल्कुल आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप जी की गाना चला दीजिएगा, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और कोशिश की जाएगी कि आपके भी सॉन्ग को प्ले किया जाए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है मेरे प्रिय भारती जी, सभी रेडियो रिमझिम परिवार को सुनने वाले को सादर प्रणाम करते हैं, और हमें आपसे निवेदन है हम 2 दिन मैसेज कर रहे हैं लेकिन हमारा गाना प्ले नहीं हुआ और गाना सुने नहीं हैं, और पवन शाह ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से जुड़े हुए हैं, और गाने की लिंक पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी 1 हफ्ता पूरा हो गया और आपके भी गाने प्ले होंगे। और इससे पहले जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, मैं फुलचंद गुजरात अहमदाबाद से, और मेरा एक फरमाइश है प्लीज़ चला दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इनकी तरफ से गाने की जो यहाँ लिंक पहुँची हुई है, और गाना है तालों में नैनीताल। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 62112 पे।

के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 78291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

0: और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, मैं सुनील यादव दुबई से बोल रहा हूँ और नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, मैं जलंधर पंजाब से शो से जुड़ा हुआ हूं और मेरा नाम गोविंद कुमार है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहां मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि इस मैसेज को हमारी मनोरमा जी शामिल करेंगी और गाने को प्ले करेंगी।
1: हमारा अगला मैसेज है रंजीत जी के तरफ से और यहाँ लिख रहे हैं, हाय सर, क्या मेरा भी सॉन्ग बज सकता है, बट सॉन्ग नेम प्यार हो ही ना दोबारा। मैं रंजीत चौधरी दुबई से।
0: और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश आई हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: क्या हाल बता सकता हूँ, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है,

अभी हम लोगों ने सुना रंजीत जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नीलकमल जी की आवाज़ में, हुई प्यार ना दोबारा हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, किसी को ये सोचकर साथ मत छोड़ देना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, और बस ये सोचकर साथ निभाने कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप राम दिल्ली से। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी, और लिख रहे हैं ये शायरी मनोरमा जी के लिए है, तो मनोरमा जी ही इस शायरी को शामिल करें।

0: प्यार में प्यार को आजमाया नहीं जाता, आजमा कर प्यार कभी पाया नहीं जाता। प्यार पाने के लिए विश्वास की जरूरत है, बिना विश्वास प्यार कभी निभाया नहीं जाता।
1: और बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं मोतिहारी से मजरा आलम, एक भोजपुरी गाना है, फरमाइश है और गाना सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ बजा दीजिएगा। और का लिख रही हैं का हाल बा मनोरमा दी, और ज़रूर बताएं। तो मनोरमा जी
0: जी जी मेरा भी बढ़िया है।
1: और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी, और लिख रही हैं मुझे गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं हम हैं पिया जी के पतरी तिरी हुआ। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम आप सिर्फ बड़े लोगों को देख रही हैं क्या, और मैम मनोरमा मैम की शादी हो गई है क्या, आवाज़ बहुत प्यारी है, और ऐसा नहीं है, और इसमें बड़े छोटे क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, और आपकी भी मैसेज शामिल की थी, और आपको बोले भी थी अपना गाने की लिंक भेज दीजिए या फिर गाना बता दीजिए, मैं बजा दूँगी। आपका एक सप्ताह पूरा हो गया है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी लिख रहे हैं, बदले नहीं हम बस खामोश होना सीख लिया, बदले नहीं हम बस खामोश होना सीख लिया, जिंदगी के हर एक दर्द को हंसकर सहना सीख लिया, गिला नहीं अब किसी के बदल जाने से क्योंकि हमने अकेले मुस्कुराना सीख लिया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग भारती दी, सुपर सॉन्ग मनोरमा दी, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्रमोद कुमार साहू, ग्राम बिरई, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से, और 15 अगस्त की शुभकामनाएं भारती जी आपको, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और हमारे सभी श्रोतागण को भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश है पहुंची हुई है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इसको हमारी मनोरमा जी शामिल करेंगी, तो कीजिए मनोरमा जी।
7: हमारा अगला मैसेज है विकास चौधरी जी की तरफ से, और यहाँ ने मैसेज किया है इन्होंने, मेरा भी गाना बजा दीजिए, आज कई दिन से बजा नहीं है, और मेरा नाम विकास चौधरी है दुबई से, मेरा दोस्त रंजीत, हमारे तरफ से रेडियो रिमझिम के जितना भी श्रोता लोग के राधे राधे, गाना है सुना है सनम गम दिहलु बरियारे, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं खूबसूरत सॉन्ग को।

तो अभी हम लोगों ने सुना विकास जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तोर दिल है कि चार्जर कते ही लगा ले लूँ, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बताइए मनोरमा शो कर रही हैं क्या। तो जी हाँ, मनोरमा जी भी शो कर रही हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय नयम अंसारी जमतारा से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, मैं सुनील यादव दुबई से बोल रहा हूँ और नमस्कार, और गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, तसल्ली होती है हमारे दिल को कि चलो कोई तो है, अपना मनोरमा भारती जी हर वक्त याद आता है। दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, सॉन्ग आज अभी इसी वक्त मुझे पता चला है कि मुझे प्यार हो गया है। और

और गाने की लाइन बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और गाना है जो कि लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि माई होल रनवा दे दो। और इसी के साथ यहाँ मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो 90.4 अमरजैट पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती दी
3: नयापारा विरई से वसंत कुमार ठाकुर, मेरा सॉन्ग कब चलेगा और कब चलाओगे भारती मैम जी? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी सॉन्ग प्ले होगा, पर यहाँ आपकी तरफ से कोई गाने की फरमाइश मुझे नहीं है। अगर गाने की फरमाइश हो तो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है,
7: हमारा अगला मैसेज है बसंत कुमार जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है प्रमोद कुमार साह, ग्राम भिरई, जिला बलोद, छत्तीसगढ़। बसंत ठाकुर जी, भारती जी, आप सभी कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं, कर रहे हो। 15 अगस्त आप सभी रेडियो
3: परिवार को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी रेडियो की तरफ से सभी श्रोतागण को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी से, एमडी मीनू जी तो जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरे दोस्त हरिंदर जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ललू कुमार जुड़े हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि मनोरमा जी प्ले करेंगी। तो
7: हमारा अगला फरमाइश है प्रदीप जी कुमार के, प्रदीप जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया हाय, गाना सुना दीजिए पवन सिंह के, केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो। तो चलिए गाना प्ले करते हैं आपका और इन्जॉय करते हैं।

पूछो ना, दामाद जी कुछ कहला ना का? मनोज बाबू के साथ ही रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

0: लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग प्रदीप कुमार जी की तरफ से, प्यार में नहीं थी हम बेवफा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और लिख रहे हैं काहू दिलीप भाई का हाल चाल बा, हो उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चिता सिंह और रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि
1: कागज की नाव लेकर समंदर पानी नहीं होते, कागज की नाव लेकर समंदर पानी पार नहीं होते, सिर्फ चाहने से सपने साकार नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने को, क्योंकि किस्मत के सहारे चमत्कार नहीं होते।
0: और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी से, तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती दी, गुड आफ्टरनून मनोरमा दी, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपर नारायण से जुड़े हैं, और इतना दिन से कहाँ रनी है मनोरमा दी, और सब बताई मनोरमा जी का हाल बावे।
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया बा।
0: और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, और मेरा नाम दुर्गेश आजमगढ़ से है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ गाने की भूल पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं आज अभी इसी वक्त, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या पता चला है
1: कि मुझे प्यार प्यार प्यार हो गया है,
2: कि मुझे प्यार प्यार।
3: और यहाँ दुर्गेश जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है, जो लिख रहे हैं मेरा गाना चलाने के लिए, थैंक यू मैम जी, तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि हाय

लिख रहे हैं कि ललू कुमार बेतिया जिला से हैं और बजा दो हेलो मैम चंडीगढ़ से, और मेरे दोस्त हरिदार जी और क्या हुआ 12 बजे से बोल रहा हूँ और नहीं बजाना है क्या गाना सुना दीजिए, और तुमसे खफा है और हमसे खफा है और मिस रश्मि की आवाज़ में है, गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा उससे पहले जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि नैन टेलर सिवरपुर से मुझे गाना सुना दीजिएगा भारती जी, और गाने के बोल हैं शादी हुई और बर्बादी हुई, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और काफी दिन हो गए हैं इस गाने को सुने हुए, तो चलिए आप ही के साथ एंजॉय करते हैं रेडियो

अभी हम लोगों ने सुना शिल्पी राज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बर्बादी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो लिख रहे हैं थैंक यू मैडम जी गाना बजाने के लिए धन्यवाद, और नैन टेलर जी मैसेज किए हैं तो, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं आपकी आवाज़ बेस्ट मैम जी भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश जी, और इसके लिए दिल से धन्यवाद, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि नमस्ते मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं और इजरा नवादा संग्रामपुर से मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, तो लिख रहे हैं मेरा भी एक गाना है सुनना चाहता हूँ इजरा नवादा से, ओहो, और इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं कि सोनालाल कुमार जी तो अपनी गाने की फरमाइश आप बिल्कुल कर सकते हैं, और गाने की फरमाइश कीजिएगा तो ज़रूर प्ले कर देंगे, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ पवन सिंह की आवाज़ में, और गाना सुनाइएगा, और मिथिलेश बोल रहा हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और संग्रामपुर के रहने वाले हैं, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि फरमाइश पहुँची हुई है लल्लू कुमार जी की तरफ से बेतिया के रहने वाले हैं, और गाना है वो तुम से खफा है और हमसे खफा है, और हिमेश रेशमी की आवाज़ में है, तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में यह प्यारा सा सॉन्ग। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचार की तरफ, तो तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और मिलते हैं आपसे फिर समाचार के बाद।

0: Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
4: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, उलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। टूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब

0: पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
1: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
14: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स। क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
15: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
16: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
16: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
19: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
18: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
20: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9939365923।
21: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
22: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9774-86164।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 78291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।
1: तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

सोनी मैम नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में, और गाना सुनाइएगा। तो जी पवन सिंह की आवाज़ में आपको गाना तो सुनाऊंगी, पर कौन सा गाना ये बताइए, फिर मैं आपके गाने को प्ले करूंगी। उसके पहले हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम एक शायरी भेज रहा हूँ खास आप दोनों के लिए, और थोड़ा प्यार से पढ़िएगा। तो शायरी तो नहीं आई है, बस बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अभी जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अर्ज किया है, इश्क है तो छुपाती क्यों हो, मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों हो, कह दो एक बार दिल की बात हमसे, वरना आँखों से प्यार जताती क्यों हो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुकेंद्र कुमार जी, तो फिर से स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बोलिएगा, तो मैंने बोल दिया है सभी दोस्तों को। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, राम राम भारती जी, स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, और राज गारमेंट फगवाड़ा पंजाब से भारती जी, गाना सुनना था अल्फा राजा का आवारा हवा का झोंका हूँ, और मेरा गाना प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश प्ले होगी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ा।

तक नहीं पहुंचा। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता,

अभी राज्य की तरफ से हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और गाने के बोल थे आवारा हवा का झोंका हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के लिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव भारती जी, मेरा नाम शंभु यादव, घर बस्ती जिला भागर का जिला गोपालगंज बिहार में भी प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, और मेरा भी हाजिरी लगा दें। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रीति जी, प्रतीक्षा जी और सानिया जी, रिंकी जी, दिलीप जी, भंवर जी और रंजन जी, राधिका गारमेंट्स से मैं बोल रहा हूँ, और तो प्लीज़ मेरी हाजिरी लगा दीजिएगा, हर हर महादेव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी हर हर महादेव। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो सोनी मैम, मैं विकास चौधरी दुबई से, और मेरे साथ रंजीत चौधरी एंड मुन्ना, बट सॉन्ग सुना दो और सैड पवन सिंह का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और पवन सिंह का सैड सॉन्ग सुनना है तो बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है। सैड में तो बहुत सारे पवन सिंह के सॉन्ग आते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है, नमस्कार सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्ति के ऊपर एक सॉन्ग सुना दीजिएगा बहन, जो सबसे बेस्ट हो हमारे देशभक्ति के लिए, धन्यवाद है, जय हिंद। और मैं बिहार शरीफ नालंदा से हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं।

0: और इसी के साथ यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुंची हुई है जो कि दिलीप राम जी की तरफ से पहुंची हुई है और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है तो प्लीज मुझे भी गाना सुना दीजिए। अगर लिख रहे हैं भारती जी हम पे भी जरा ध्यान दीजिए, कतार में कब से खड़े हैं और मैसेज करने वाले हैं दिलीप जी, तो चलिए इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश आई हुई है और गाने के बोल हैं झुके दिहे नाही देसवा के सान सुगना, और बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आई है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: राम भक्त है, एक भाई जब अपने घर से

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैम आपने मेरा गाना नहीं सुनाया और प्लीज़ सुना दीजिए प्लीज़। तो जी बिल्कुल कोशिश है कि आप सभी के गाने मैं सुनाऊँ। और यहाँ पर मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हमने भी मैसेज कर दिया है। और लिख रहे हैं कि गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलीनिया, सावित्री सबलीनिया, सुमन सबलीनिया और बेटी अंशु रानी जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, और हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपको और आपके देशवासियों को, हमारे देशवासियों को, और आपने बहुत ही बेहतरीन गाना सुनाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना आपको अच्छा लगा ये सुन के हम सबको भी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्रमोद कुमार साहू, ग्राम बिरई, जिला बालू, छत्तीसगढ़, गाना सुना दीजिएगा, सावन का महीना आया है भारती जी, और मेरे मैम एक बार सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनका मैसेज।
1: भारती जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, और गाना चलाने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। गाने आप सभी के पसंद आए होंगे, और 15 अगस्त के एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सभी के। तो मैं दिलीप राम दिल्ली से आप सभी के बीच बने हुए हैं, तो नमस्कार।
0: और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगली फरमाइश पहुँच भी लिख रहे हैं कि हेलो सोनी मैम, मैं विकास चौधरी दुबई से जुड़ा हूँ और मुझे भी ये गाना सुनना है। और लिख रहे हैं पवन सिंह का कोई भी सैड सॉन्ग चला दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि उनकी तरफ से एक गाने की लिंक पहुंच चुकी है, तो चलिए बिना देरी किए पवन सिंह का सैड सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। और गाने के बोल हैं चलिए गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोगों ने सुना विकास चौधरी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और लिख रहे हैं थैंक यू सोनी मैम गाना सुनाने के लिए। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मुझे भी गाना सुनना है। लिख रहे हैं सोनी मैम नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में, और एक गाना सुनाइएगा। और लिख रहे हैं कि देशभक्ति पवन सिंह का गाना, और लिख रहे हैं मिथिलेश मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और पवन सिंह की आवाज़ में देशभक्ति सॉन्ग की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए पवन सिंह की आवाज़ में गाना प्ले करते हैं, और गाने के बोल है हमारा देश का महान। तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में गाने को।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि हमारी मनोरमा जी शामिल करेंगी। तो कीजिए मनोरमा जी शामिल।
1: हमारा अगला मैसेज है प्रमोद कुमार जी की तरफ से, और लिख रहे हैं प्रमोद कुमार सागराम भिलाई जिला बलोद छत्तीसगढ़। आपको बहुत 15 अगस्त की बधाई हो सब देश भारतीय जनता।
0: और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं सोना लाल कुमार जी की, थैंक यू मिथिलेश जी गाना सुनाने के लिए, धन्यवाद सोना लाल कुमार जी। तो इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं हाय सोनी मैम, मैं रंजीत चौधरी दुबई से, और मेरा भी सॉन्ग बजा सकते हैं क्या। और लिख रहे हैं जान चांद हो गईलू नील कमल सिंह का, और मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, और रजक एंड मुन्ना विकास। लादेन राजूलाल, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आपका भी सॉन्ग प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास जो कि यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ, और मुझे भी मेरे भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और विक्रम चौहान नवादा से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं गाना सुनना है, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल हैं पियर फराक वाली, और गाना है पवन सिंह की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग ने सुना पवन सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पियर फराक वाली। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शामिल कीजिए।
1: हमारा अगला मैसेज है गणेश कुमार पीपरा नारायण से, और इन्होंने मैसेज किया है, मनोरमा दीदी आपके लिए ये मैसेज है। ज़िंदगी में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, खुश वही रहते हैं जो शाम के दो पैक मार के सो जाते हैं। भारती दीदी, ये मैसेज मनोरमा दीदी के लिए। मनोरमा दीदी, आपकी बोली मिठाई खाने लग रही है। अच्छा जी,
0: और लिख रहे हैं कि दोपहर के बाद खाली भोजपुरी बज रहा है, तो क्या ही करें, हमारे पास अभी भोजपुरी गाने की बहुत सारी फरमाइश पहुंची हुई है। और चलिए, जिसको जो पसंद वो सुन रहा है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, और मैं अब्दुल अली, और लिख रहे हैं मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने के बोल पहुँचे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय सोनी मैम, रंजीत कुमार, और मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल, आपको भी गाना सुनाया जाएगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि
1: नाम बदल जाता है, पहचान बदल जाता है, एक विदाई से लड़की की पूरी जहान बदल जाती है। जो चहकती थी चिड़िया की तरह अभी अपने आंगन में, पराए घर को अपना बनाने में उसकी मुस्कान बदल जाती है।
0: और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी चौहान से, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है। और गाने के बोल हैं तू जो मिलेगी ना हमको, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करे 87-894-18744।
11: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजन 91.4 FM में, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। और यदि आप हमसे इस शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हम भी लाइन में हैं भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं पवन सा, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम, मनोरमा मैम, आप दोनों में मैम का आज का बकैती बहुत अच्छा लगा,

तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा, लिख रहे हैं थैंक यू, गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और नमस्कार प्रणाम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहा है कि रंजीत चौधरी मुझे भी गाना सुनना है, और जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं मेरा भी नंबर है, और मेरा भी नंबर लगा दीजिए। इसी के साथ इनके तरफ से गाने की लिंक पहुंची हुई है, और गाने के बोल हैं जा जान चांद हो गई लू, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना नीलकमल जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग जान चांद हो गईलू। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम, मैं मिथिलेश बोल रहा हूँ और हिजरा नवादा से, पटना से, और पाकिस्तान फिल्म का गाना सुनना है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी आपके गाने को प्ले किए हैं और मैं आपको बता दूँ कि फिर अगले शुक्रवार को ही आपके गाने को प्ले कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, भोजपुरी गाना सुना दें कोई भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं सुपर, और मैसेज करने वाले हैं गणेश। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते प्रणाम, हम अनूप कुमार कुशवाहा बिलसुई दरौली सिवान से, अभी महाराष्ट्र से सुन रहे हैं और सुनाना चाहते हैं अनूप अजय लवकुश कृष्णा को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप सभी का भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ भारती जी, और मुंबई से एमडी सदाम और जुड़े हुए हैं और देशभक्ति सॉन्ग सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं जलवा जलवा सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMAZ पर।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे क्योंकि ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्रमोद कुमार साहू, ग्राम बिरे जिला बलोच छत्तीसगढ़ से, और लिख रहे हैं देशभक्ति गाना जलवा जलवा सुनाइए। और अभी तो चल ही रहा था और आपने सुना भी होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं मनोरमा दी आपकी शादी हो गई है क्या बताइए जरूर। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिल के दर्द कैसे बताएं, हमारे यार दर्द ऐसन दिल जला कि रोलो न जाला। और बहुत बढ़िया सॉन्ग दिलीप राम दिल्ली से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और इजरा नवादा संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना चल रहा है। और जलवा जलवा लिख रहे हैं कि चलते चलते बाय नमस्कार, कल फिर मिलेंगे रेडियो रंजन में और बाय बाय। और इसी के साथ आपको भी बाय बाय। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिए प्लीज़। और लिख रहे हैं कि जिस दिन से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ बहुत ही स्वीट वॉइस है। और लिख रहे हैं कि मेरी तरफ से 15 अगस्त की पूरे देश हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत

बहुत मुबारकबाद और एक नज़र हमारे मैसेज के भी तरफ डाल दो और हमारे मैसेज को क्यों इग्नोर किया जा रहा है ये तो बताइए। ऐसी बात नहीं है, आपके मैसेज को इग्नोर नहीं किया जा रहा है और आपकी फरमाइश गुरुवार को ही हमने प्ले किया था तो अगली फरमाइश गुरुवार को ही प्ले होगी। और इसी तरह जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नमस्ते प्रणाम, हम अनूप कुमार कुशवाहा दरौली से जुड़े हुए हैं और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की यहाँ लिंक पहुंची हुई है और बर्बादी सॉन्ग सुनना चाहते हैं।

0: अभी हम लोगों ने सुना शिल्पी राज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बर्बादी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैंने एक शायरी लिखी थी, वो आपने पढ़ी नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। और शमशाद अली लिख रहे हैं कि छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, रातों को नींद में सपने देखता हूँ, तो यही बात करता हूँ। आपका प्रोग्राम जब आता है भारती जी, तो आप सभी लोगों को दिल से याद करता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसके लिए आपसे आपका दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं इसरा नवादा संग्रामपुर से हैं, और इनकी तरफ से वॉइस पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो, मेरा नाम अखिलेश महतो है, घर इजरा नवादा, थाना संग्रामपुर से हैं। भारती मैम, मुझे गाना सुनना है कर्मा फिल्म का, और कुछ बोलना चाहूँगा कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। सुनने को बहुत सारे रेडियो स्टेशन सुना, पर रेडियो दिन जी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। गाने का बोल है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, फिल्म कर्मा से।
0: और इनके तरफ से फीडबैक मैसेज भी पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुन लेते
1: हैं। गाने का बोल है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, फिल्म कर्मा से।
0: ओके जी, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी के साथ समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेजेस पहुँच चुके हैं, और तो श्रोताओं समय हो गया है समाप्त करने का, तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूँगी। सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रंजीम 91.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-7-14-86-164।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ग्राम पंचायत राज गौसिया के मुखिया रागनी मिश्र, पुत्र वधु राधा रमन मिश्र, परमंडलीय संयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सारण के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो MGM,
5: सुनो दिल से।
7: प्रस्तुत बा निर्गुण रुआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा, हम और बाबूजान भाई, देखी एके बाबूजान भाई सजौले बड़े कितना बढ़िया आ, गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण, सुनी संसार में का होता आ का करे के चाहिए। शेरबा
8: डाली डाली बगिया में

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198869।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86-164।

मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: मैं अपने देश का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही मैं हमेशा गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन यही अरमान रखता हूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ अपने गोपालगंज जिले के सांसद डॉक्टर अलोक कुमार सुमन जी सभी जिले वासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और आगे

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: Now pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: भारती जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: कैसे बने?
2: हम ठीक बने रहुआ, बताए रहुआ कैसे
1: बने? छुट्टी रहा ना, आज बड़ा लंबा बात होते रहो, से पता चला कि लंबा बात होता है। और ये
2: सब ठीक बरुआ, बताए रहुआ, लोग ठीक बने ना सब? ये
1: सब ठीक है, कोई दिन कहीं कटा था।
2: अच्छा,
1: तो चली नहीं?
2: हाँ, सो चली
1: ली। यहाँ का नहीं आये?
2: यहाँ के
1: मनोरमा जी
2: आयल बानी।
1: अच्छा, टोटल कॉल रिकॉर्ड कर देगा। चलिए, हम चेक करे आज पूरा बोल बे की ना
2: मैसेज पूरा हो जाला। सोमवार के नुरुआ सुने?
1: अच्छा, तो ठीक है, हमारा फायदा हुआ ना।
2: फायदा आपका हुआ, कोई बात नहीं।
1: तो आज सोनी जी के भी था, सोमवार को सोनी जी के भी था, हमारा भी था, तो वही आपसे पूछना पड़ेगा ना कि हाँ मेरा आज यूथ है कि नहीं है। तो आज एक रिक्वेस्ट बात जी, हम बतियाते बतियाते हिंदी बतियावे लगे एना सामने सामने केहू से भोजपुरी बतियावे में कोनो दिक्कत नहीं है। जब फोन पर बात हुई ना तो बतियाते बतियाते हिंदी में जब चल जाला, क्या करी। एगो रिक्वेस्ट बा, आज ओकरा के लोड करी, मनीष सम्राट है, कके बर्बाद मोर जवानी के, हमार फरमाइश से कुछ अलग रहेला,
2: सबके उससे अलग रहेला।
1: हाँ, हमार सोने सोने गाने हम सुनिले, ये रिक्वेस्ट बा आज बजा दे। हमार तो काजे ने कोई दिन से हमार गाने नहीं बजे, पता नहीं काहे।
2: ना ना, वो शुक्रवार वाला अभी कुछ कॉल बाचल बावे,
1: शुक्रवार वाला भी नहीं बजल, एक बाद मनोरमा मैम वाला भी नहीं बजल, तो यही से बुझाता हमारे कोई दिन हो गल गाना हमारा बजला। मनोरमा जी वाला भी ब्रेक लग गए, एक बाद में रउरा कोई नहीं, वो दो दिन में ना बजल, अब आज बाजी चाहिए।
2: ना ना, आज पूरा कोशिश करके बजा ही देवे, ई ना बाज जाइए या ना तो शुक्रवार वाला बाज जाइए।
1: वो तो बात बोल रहे, तो अब अगले हफ्ता बाजी पता बा। चलिए, वैसे कौन बात नहीं है, हम तो रोज हाजिरी लगाइए दे ले, बाजे चाहे न बाजे, चलिए बजाई।
2: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी रही
1: बहुत रउरा के, मनोरमा मैम की भी रही, आ सोनी मैम की, अगर सुने तो अपन काम कान बंद कर लेन, सोनी मैम के नहीं सुना के।
2: अच्छा जी,
1: चलिए ठीक है,
2: गाना प्ले करते नहीं सुनक रही रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 असम में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मनोजा दीदी बोल रहे हैं क्या?
0: नहीं
1: भाभी। पहचान रहे हैं क्या?
0: जी
1: पहचान रहे हैं।
0: हाँ, गणेश बोल रहे हैं।
1: हाँ, मेरा गाना तो आप नहीं बजा रहे, कल भी नहीं बजा रहे, परसों भी नहीं बजा रहे।
0: योर वॉइस योर चॉइस है।
1: हाँ, और कल भतीजा से भी नहीं बजा रहे।
0: आपका गाना लगातार हम उधर प्ले किए थे, इसीलिए नहीं। आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: मनोरमा दीदी अभी नहीं आई क्या?
0: आई हैं।
1: गाना सुनाए सावन का बजा दीजिए।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: सावन के कोई भी सॉन्ग बजा दीजिए अपने।
0: सावन का? अच्छा, और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा
1: आपको? और सोनू दीदी का भी रहेगा, आप मामी के घर गए हैं तो सोनू दीदी बोल रहे हैं कि मामी के घर पे आए
0: जी। ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: ज्यादा।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो।
13: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन में।
13: जी मैम, उम्मीद अच्छा है, होंगी, कैसे हैं?
12: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: हम भी मस्त है मैम। उस दिन का कॉल बजा नहीं अभी तक?
12: नहीं बजा है
13: मैम। तो किसी का भी नहीं बजा है?
12: कुछ लोगों का बजा है, कुछ का नहीं बजा है।
13: तो मैम आज बजेगा?
12: बिल्कुल बजेगा।
13: 2 दिन तक इंतजार किए हैं कि अभी तक नहीं बजा है?
12: नहीं बजेगा।
13: आज से ये गाना हमको सुनना है, गाने का बोल बताए।
12: बताइए।
13: गाने का बोल है हमको हमी कुछ गाना है
12: हमको हमी से चुरा लो।
13: हाँ, यही वाला।
12: अच्छा जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है?
13: डेडिकेट है आपको, जितने भी हमारे पसंद को सुनने वाले हैं, सभी को, सभी आर्टिस्ट को।
12: जी
13: मैम, आप तो बहुत लेट से चालू हुआ था भोजपुरी एक्सप्रेस।
12: वो रेडियो खराब था ना, इसके लिए मैंने बताया नहीं था।
13: नहीं मैम, हम तो सुन रहे थे, फिर से नहीं कोई कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो बंद कर दी उसको, फिर से स्टार्ट किया। तो
12: हमने शो में भी जिक्र किया था कई बार कि मतलब हमारा रेडियो में कुछ परेशानी आ गया है, इसीलिए थोड़ा नहीं चल रहा है, इसीलिए आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं।
13: कोई बात नहीं मैम। तो कितने बजे स्टार्ट हुआ था कल?
12: कल स्टार्ट हुआ था आपको 3 बजे से 5 बजे तक चला।
13: मैम तो हम 2 बजे SMS किए थे लेकिन आप हमारा बजाय ही 3:30 में।
12: नहीं अब उसमें जैसे मैसेज आते जाते हैं और आते जाते हैं और जो पहले से आया रहता है वो नीचे चला जाता है ना, तो सब ढूंढना पड़ता है, इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है।
13: उसके बाद से आपने कितना रिक्वेस्ट किया तो आप भी बज जाए हैं, मतलब पूरा हो गया फरमाइश
12: जी।
13: और काट भी दी पूरा भी गाना इतना ही?
12: नहीं तो मान लीजिए पूरा सुनाते तो उतना में अधिकतर लोगों का मैसेज शामिल नहीं कर पाते ना
13: जी मैम। तो ये कब बजेगा?
12: कम था ये आपको अब देखिए, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
13: ठीक है हम सुनते हैं। चलिए और भी लोग हैं, आज भी हमारा एक नंबर में नहीं लगाया।
12: एक ही नंबर है?
13: एक ही नंबर है मैम, अभी बिजी आ रहा है।
12: हाँ हाँ वो कॉल आया था पर आवाज उधर से नहीं आ रही थी तो कॉल कट करना पड़ा।
13: चलिए मैम तो मेरा इंतजार सफल हुआ।
12: जी जी
13: जी धन्यवाद एडवांस
12: रेडियो रूम जिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: ओके बाय।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: हम ठावे से रामाजी प्रसाद बोल रहे
1: हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: हम ठीक है, दिनों अच्छा भूल आज।
1: अच्छा,
0: वाला सुन है चालू भूल का और वाला
1: अब चालू करे जाते नहीं, बस ये कॉल
0: गाना सुना दें।
1: बता दें
0: अब हम चलते हैं।
1: अच्छा, गाना सुना हो बाकी होके
0: जितना लोग सुन रहे सब कुछ सुनते बा।
1: जी जी,
0: हम सुनते बने रहे सुनते बने।
1: चले फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
2: अच्छा।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: मैम, नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
8: मैम शैलेश कुमार, बाराबंकी से।
7: जी जी, कैसे हैं आप?
8: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
7: हम सब भी ठीक हैं।
8: जल चढ़ा के आ गई?
7: हाँ,
8: अभी पीछे रह गए।
7: अच्छा, अभी आ गए क्या जल चढ़ा के?
8: नहीं, हम तो गए ही नहीं, ड्यूटी में हूँ मैं।
7: अच्छा, कोई बात नहीं,
8: आज गाना सुनवा दीजिएगा मुझे।
7: बता दीजिए कौन?
8: जय जय शिव शंकर, काका लगे ना कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया।
7: जी,
8: और गाएंगे अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, आपको, तमाम रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को और पूरे रेडियो रंजन परिवार को।
7: जी जी, ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
8: ओके, थैंक यू।
9: जय जय शिव शंकर।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: हरमिंदर तिवारी बोल रहा है, चंडीगढ़।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है
1: जी। कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सुना दीजिए शंकर जी का कोई गाना बढ़िया गया। कौन सुन रहा है
1: और गाना अच्छी है?
0: छोटा सुने मेरे रिमझिम आदमी,
1: फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्कार।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी

0: फ्रैक्चर, फालिट, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: गोपालगंज जिले के नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी के तरफ से आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे ये कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
6: आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
7: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
10: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार
10: मैम, कैसी हैं?
11: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: जी मैम, हम भी हैं और सब आरजे लोग अच्छे हैं।
11: जी सभी लोग अच्छे हैं।
10: तो मैम गाना बजा दीजिए भोलेनाथ का। हेलो
11: जी, भक्ति सॉन्ग तो मतलब कि ना मूवी वगैरह का बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
10: एल्बम का नहीं बजाइएगा, अच्छा है गाना।
11: एल्बम
10: इजाजत
11: नहीं देंगे, इसके लिए इजाजत नहीं देंगे।
10: फिल्म का गाना तो बाबा धाम का गाना तो बता दीजिए।
11: जी
10: ये क्या बोल रहा, टेंशन बढ़ गई रे भोलेनाथ, टेंशन बढ़ गई रे गाना आया है जी, यही बजा दीजिए। और सावन का दूसरा सोमारी का सभी श्रोताओं को।
11: ओके जी, फिर चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम्यून 90.4 FM में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम। मैं RMC से। बस ठीक है मैम, बस ऐसे हैं, आपका सौता इंतजार करते हुए। जी जी जी,
1: कौन सा गाना
0: जी आप सुनवा दीजिएगा? गाने का बोल है फूल फूल में बनी तेरी तस्वीर, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिम्यून दोस्त लोग उनसे सभी।
1: जी जी बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिम्यून 90.4 FM।
0: ओके मैम, धन्यवाद,
1: वेलकम।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
7: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029 94 911। जी हाँ, 80029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: आपको मैडम?
9: हाँ बोलिए।
10: मैडम मुझे जी सुनना है, बर्थडे सॉन्ग सुनना है।
9: जी जी, नाम बता दीजिए पहले अपना।
10: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
9: अच्छा जी, और वैसे बर्थडे किसका है?
10: बर्थडे हमारे लड़की अवंतिका सिंह का है।
9: अच्छा जी, तो पूरे रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ ही आपकी अवंतिका जी का हैप्पी बर्थडे।
10: थैंक यू मैडम।
9: और गाना हैप्पी बर्थडे का कौन सा सुनना है?
10: मतलब जो भी अच्छा हो बर्थडे सॉन्ग।
9: अच्छा जी, ओके जी,
10: ठीक है। नमस्ते
9: नमस्ते, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो ना कह रही है। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 FM में।
1: जी मैं कमरान नजीर।
0: जी
1: काम करी है।
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अब भी अच्छे हैं। कॉल करवाज लेटे हो गया है?
0: 11:30।
1: और सब बढ़िया है, घर परिवार?
0: सब कोई बढ़िया है। हाँ नाश्ता हो गया है, आप बताइए आप सबका हो गया?
1: हाँ मेरा नाश्ता तो हो गया। इधर दिल्ली में बादल जैसा है, बारिश होगा उधर?
0: नहीं इधर कल का बारिश हुआ है तो आज मौसम थोड़ा ठीक ही है, ठंडा है।
1: चलो कल बारिश हुआ था। जी जी इधर आया तो बादल था, तो बारिश होता ही रहता है कभी कभी, गर्मी भी
0: है। क्या मौसम है, बदलते रहता है हमें।
1: मौसम तो है सितम्बर अक्टूबर तक चलेगा, तब तो ठंडा का मौसम हो ही जाएगा।
0: ये तो बात सही है।
1: सोचा की कॉल लगाऊंगा, कभी कभी मैं भी जुड़ जाता हूँ।
0: हाँ योर वॉइस योर चॉइस में देखे आपको।
1: तो हमको आज ये उमा शंकर भाई है उत्तराखंड में, उनके लड़की का आज बर्थडे है अंकिता।
0: हाँ।
1: तो अंकिता बर्थडे का कोई बर्थडे वाला गाना बर्थडे वाला
0: सॉन्ग
1: नहीं है?
0: जी बिल्कुल।
1: और अंकिता से और
0: जी बिल्कुल। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो। नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: ग्राम पंचायत राज गौसिया के मुखिया रागनी मिश्र, पुत्र वधु राधा रमन मिश्र, परमंडलीय संयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सारण के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87-894-18744।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
14: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: हेलो
17: जी नमस्ते
18: नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
17: जी पचपरा से बोला जी बोलती हूँ।
18: हाँ जी का हाल चाल
17: भारती बोलते हैं।
18: हाँ
17: आज राष्ट्रीय गान सुनवा दी कल देश कल 15 अगस्त
18: हाँ
17: राष्ट्रीय गान बजे चाहिए बजाज बजे काल बजे
18: काले
17: बजा हाँ काले बजा राष्ट्रीय गान काले ठीक रहे अब इतना बिल्कुल बजबे पहले लेकिन कल मान लीजिए 15 अगस्त तब देशभक्ति तो बजे चाहे ना राष्ट्रीय गान बढ़िया आला बजा दे
18: ठीक बा
17: और सब
18: ठीक बाबे
17: बहुत बढ़िया बढ़िया
18: और गाना सुना हूँ सब क्योंकि
17: अभी तो अभी खाना खाए बैठल बानी।
18: अच्छा
17: गाना में छिला कर जूस में बेचला ना तो फिर व्यापारी लो आई लो तो छीन के देवे कर तो अभी अबे तो आके खाना खाए बैठे बना स्नान कर के
18: खाए में तो बहुत अच्छा लगे खाए में तो बहुत अच्छा लगे
17: कौन चीज खाना की गाना
18: गाना
17: तो रहे में तो मिलते ना हुई
18: मिले ला बावे हमनियों के गावे क्यों क्योंकि इतनी खिलाला नो तो लेके आवे ला लो एगो दूगो तक खाए
17: रसगुल्ला के सामान होला हमारे घर के गाना है बोल
18: ओ में कोनो कोनो खूब कड़क होला खिलाला ना कोनो कोनो खूब मतलब
17: ना ना आती सोच ली जब रसगुल्ला के सामान हम सोच ले जी वो पोर और घी छिले तो चार को पोर छिलाई।
18: अच्छा तो ठीक है वाह
17: ठीक वाह
18: ठीक वाह फिर गाना प्ले करता नहीं सुनत नहीं रेडियो 90.4
17: गाना प्ले

0: कुछ मैं रोए लोग इनसे बात होता है,
1: उनको गाना सुना है,
0: बता दीजिए कौन सा गाना।
1: नीलकमल सिंह का गाना ये गौवा का धूरी है राउत बजान माथवा।
0: हाँ हाँ
1: वही वाला।
0: और गाना सुनाना भी है।
1: हाँ श्रोता को और आपको भी, एक मेरे प्यारे जीजा जी है उसको भी।
0: अच्छा तो जीजा जी का नाम क्या है?
1: फिरोज आलम।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजन में कॉल किया।

0: जी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0970-6575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: ब्रेक के
0: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो।
13: हाँ नमस्कार मैम।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: आप सब बोलिए मैम, कैसी हैं आप?
12: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: हम भी ठीक हैं भारती मैम।
12: तब
13: खाना पीना हो गया है?
12: जी खाना पीना हो गया है। आप बताइए आप सबका हो गया?
13: जी मैम मेरा भी हो गया है खाना, बच्चा सब गया लुकूल।
12: चलिए सब तो बढ़िया है।
13: गाना सुनना है मैम?
12: बता दीजिए कौन सा।
13: शांति का पुण्य का प्यार का चमन,
12: मेरा मुल्क मेरा देश।
13: जी जी मैम जी मैम।
12: और गाना सुनाना भी है?
13: जी मैम, आप मनोरमा मैम।
12: ओके चलिए फिर, रेडियो रूम से मैं कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: थैंक यू मैम,
12: वेलकम।

0: कैसे हैं?
1: ठीक है,
0: हम सब भी ठीक हैं। कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है आज, गाना कोई भी सुना दिए।
0: देशभक्ति?
1: जी, 15 का।
0: अच्छा जी, केक भी रहेगा?
1: जी जी, यहाँ फल है।
0: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: नमस्ते।
2: बल्ली कित्थे?

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंट स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.

0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में।
2: थैंक यू। मैं अरुण मित्रा बोल रहा हूँ, लालगंज हरियाणा। हमको गाना सुनना है मैडम जी, नशा शराब में होरी तो नाच रही है।
1: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी रहेगा।
2: सबसे पहले तो आप आदमी को
1: जी,
2: है ना। सोनी मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
2: अच्छा, सबसे पहले आप आदमी को डेडिकेट करना, मतलब जितना भी है सुनने वाले प्रेमी आदमी उनको
1: जी,
2: है ना। और ठीक है,
1: और सब ठीक है। आप बताइए, आप सब ठीक है ना?
2: हाँ जी, बहुत आज पूजा हो रहा है, रुद्र अभिषेक है, लगे हैं पूजा में। सब शाम तक फोन का काम खत्म होगा, फिर काल का पूजा होगा, मतलब 5 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। ये सभी गाना सुनाएंगे मैम
1: जी आपको? गाना कल या आज सुनने को मिल जाएगा?
2: शाम को, कल
1: कल शाम को, नहीं तो आज शाम को। ओके, रेडियो रूम से मैं कॉल किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी
0: नमस्कार,
1: मैम, नमस्कार। जी
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मैं सबको ताजर करूँगा।
0: हाँ
1: बोल रहे, आज गाना एक सुना दीजिएगा।
0: बता दीजिए कौन सा।
1: आज गाने के तो बोल है बहुत अच्छा है, क्योंकि आज पुण्यतिथि है लेजेंडरी एक्टर शमी कपूर साहब का, तो उन्हीं का फिल्म का गीत सुना दीजिए। फिल्म का नाम है पगला कहीं का। गाने का बोल है, तुम मुझे वो बुलाना पाओगे, जब भी आएगी मेरी याद मेरे संग संकल्प बनाओगे।
0: जी जी और गाना सुनाना भी है।
1: जी जी आप जितने भी जरूरी जिनके सुनने वाले श्रोता है सबके लिए है और आपके लिए।
0: जी जी
1: जी और नगर के उपलक्ष्य में यही गाना, सब कोई तो भक्ति संगीत का रिक्वायरमेंट करते ही होंगे, लेकिन मैं आज भी इस गाने का रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: उपलक्ष्य
0: डेडी रूम से मैं कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994911 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
4: नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महा

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
12: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AM पर।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर

0: जे जी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर

0: साथियों। डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल कोडागु कर्नाटक में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। PGT रसायन विज्ञान, TGT अंग्रेजी, TGT हिंदी, TGT सामाजिक विज्ञान तथा जनरल कर्मचारी, सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। आरक्षण मानदंड, वेतन, परिलब्धियां और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए सैनिक स्कूल कोडागु कर्नाटक की वेबसाइट www.sainikschoolkodagu.edu.in। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है और अखिल भारतीय उपस्थिति रखती है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख महारत्न कंपनी है, जो तेल और गैस की खोज, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन, विपणन और वितरण का कार्य करती है। इन रिक्तियों के लिए युवा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। पदनाम है प्रोसेस तकनीशियन रासायनिक, प्रोसेस प्रचालक रासायनिक, तकनीशियन यांत्रिक और तकनीशियन विद्युत। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.bharatpetroleum.com।
9: पंजाब
8: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं, प्रधान निजी सचिव और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। पदों, योग्यता, नियम एवं शर्तों, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया, अंतिम तिथि आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट moef.gov.in। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल का चिकित्सा निदेशालय आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक उपनिरीक्षक इलेक्ट्रीशियन एक रिक्ति, सहायक उपनिरीक्षक वातानुकूलन संयंत्र एक रिक्ति और हेड कांस्टेबल ड्रेसर एक रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.nic.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को आवश्यकता है नर्सिंग अधिकारियों की और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsexams.ac.in। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। पदों के नाम है वरिष्ठ परामर्शदाता सी 2 पद, परामर्शदाता सी 5 पद, कनिष्ठ परामर्शदाता सी 1 पद, कनिष्ठ परामर्शदाता लेखाकार सी, डेटा एंट्री ऑपरेटर सी 1 पद तथा अर्ली इंटरवेंशनिस्ट सी 1 पद। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से देखें वेबसाइट aijnishd.nic.in। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को आवश्यकता है पात्र उम्मीदवारों की इन पदों के लिए उप महानिदेशक पशुपालन, सहायक महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सहायक महानिदेशक फसल एवं बागवानी। आवश्यक योग्यताओं, नियमों, शर्तों के विवरण के लिए देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट। वेबसाइट है upcar.up.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे।
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
16: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
16: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 9939365923।
17: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही।
18: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
17: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
18: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
17: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
19: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
20: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
19: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
20: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
19: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
20: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
21: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
22: रेडियो रिमझिम,
21: सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
5: कर चले हम फिदा जान तन।

प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है।

0: ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेषक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
4: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
5: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
6: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे। मैं अपने देश का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही मैं हमेशा गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगा बने कफन यही अरमान रखता हूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ अपने गोपालगंज जिले के सांसद डॉक्टर अलोक कुमार सुमन जी सभी जिले वासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और आगे कहते

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज जिले के नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी के तरफ से आप सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे ये कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। इन्हीं कामनाओं के साथ समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।
8: आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
16: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है
18: नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक, डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ, पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या, स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा गोपालगंज में निकाली गई। इस दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में इस भव्य तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधान परिषद के सदस्य और तमाम विधायक गण शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर भवन से यह भव्य तिरंगा यात्रा निकली और इसमें तमाम लोग भी इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने में अपना योगदान दिए। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित जिला प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, माताओं, बहनों और NDA के कार्यकर्ताओं तथा आम जन की सहभागिता भी रही। सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ भारत माता का जय घोष करते हुए शहर का भ्रमण किया। तिरंगे की आन बान और शान के साथ निकली इस यात्रा के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। जगह जगह लोगों ने तिरंगे को लेकर उत्साह और गर्व दिखाया। यात्रा ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा अटूट संकल्प का जीवंत संदेश दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, वीर जवानों के बलिदान तथा करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करने का माध्यम है। इस तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशासन ने गोपालगंज के लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। आज जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में जिला के समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक की गई। जिले में विकास से जुड़ी सड़क, बाईपास, सिंचाई, पर्यटन एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। बैठक में बरौली विधायक मंजीत सिंह, सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार, जिला पदाधिकारी समीर सौरभ तथा 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बैठक में जिले के संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति को लेकर मंत्री महोदय को अवगत कराया। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को गति देना और आम जनता से जुड़े योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। इस दौरान विभागवार योजनाओं के प्रगति, कार्य आरंभ होने की स्थिति, भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य की गति, निर्धारित समय सीमा तथा कार्य पूर्ण होने में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के लिए महत्वपूर्ण एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान बाईपास निर्माण योजना को प्रमुखता से रखा गया। प्रतिवेदन के अनुसार पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत 2 लेन पक्के शोल्डर सहित गोपालगंज बाईपास का निर्माण NH-27 से NH-531 तक किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा आज पूरे बिहार के लिए डिजिटल क्राप सर्वे का शुभारंभ हुआ। गोपालगंज की धरती से ही इस अभियान की शुरुआत हुई। इस डिजिटल सर्वे में खेत में लगे फसलों एवं उनके तस्वीरों सहित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे यह सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस किसान के किस खेत में कौन सी फसल लगी है। बिहार के सभी 38 जिलों में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और 30 सितंबर 2026 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गोपालगंज जिले में कुल 8,12,412 प्लॉटों का सर्वे किया जाना है। गुरुवार को माझा थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तकिया से मुंह दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। मृत महिला बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव निवासी नेहा कुमारी थी। इनकी शादी करीब 5 वर्ष पहले भटवलिया गांव के सतीश प्रसाद उर्फ लालू पटेल से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार को उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच मायके वालों ने पति समेत परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। इसी बीच पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। तब तक 24 घंटों के बाद शुक्रवार की आज सुबह मृतिका के पति का शव भी एक बगीचे में आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र के चंदन टोला में आम के बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ मृत महिला के पति का शव आज लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला के पति के शव को भी आज कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घटना के बाद से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दंपति के एक बेटी है, जिसका इस घटना के बाद से ही स्थिति बुरा है, वह बेसुध पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद में इस दंपति ने आत्महत्या कर ली और अब आत्महत्या के बाद से दोनों ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित कर अनुसंधान कर रही है। अब तक इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या बयान आता है, इसका अभी लोगों को इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में जिले में जगह जगह पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत गोपालगंज वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 9 बजे मेंज स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां जिलाधिकारी झंडा तोलन करेंगे। परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें काफी संख्या में लोगों की सहभागिता भी होती है और कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इन सब की तैयारियां की गई हैं। वहीं 10 बजे समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी झंडा फहराएंगे। इसके बाद 10:05 में अनुमंडल कार्यालय पर भी झंडा फहराया जाएगा और फिर नगर थाना, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और उसके बाद पुलिस लाइन में भी झंडा फहराया जाएगा। सिधवलिया थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह सिधवलिया के लरौली गांव के राजेंद्र प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर पहले से 2025 में चीटिंग का एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। आज गोपालगंज के पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनकर उसे समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सुबह 11 बजे जदयू पार्टी के जिला कार्यालय हजियापुर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष झंडा फहराएंगे। साथ ही सभी प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा प्रखंड जदयू कार्यालय पर 10:30 बजे ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इसको लेकर जदयू पार्टी ने भी सभी तैयारी पूरी कर ली है। नगर थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक प्राथमिकी अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2021 में केस दर्ज हुआ था, तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त इरशाद आलम को गिरफ्तार किया, जो नगर थाना के कोनवा गांव के अजीज मियां का पुत्र बताया जा रहा है। जादोपुर थाना की पुलिस ने अपराध नियंत्रण और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू किया था। इसी कड़ी में 2025 में हुई एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मंटू कुमार पिता लाल बाबू यादव, जो जादोपुर के सिहोरवा का रहने वाला है। इसे गुप्त सूचना के आधार पर सिहोरवा स्थित गंडक नदी के किनारे पुलिस ने इसके गांव क्षेत्र के आसपास से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2025 में गंडक नदी के किनारे एक किशोरी की हत्या कर उसके शव को बालू में गाड़ दिया गया था और इसी मामले में पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने बालू की खुदाई कर किशोरी के शव को बरामद किया था। मृत किशोरी आंचल कुमारी पिता लाल बाबू यादव साकिन सिहोरवा थाना जादवपुर की निवासी थी। प्रतिवेदन में पुलिस को जानकारी हुई कि आंचल कुमारी की उसके पिता लाल बाबू यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा गला दबाकर हत्या की गई थी। साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मंटू कुमार की संलिप्तता सामने आई थी और तब से यह फरार चल रहा था। अब मंटू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक, डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ, पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या, स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
19: हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन।
2: जिला जदयू के अध्यक्ष श्री प्रमोद पटेल जी के तरफ से आप सभी समस्त जनता जनार्दन को 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इनका मानना है कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, तो बस जियो वतन के नाम पर।
20: तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सेवन सी डी ट्रिप।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

ग्राम पंचायत राज गौसिया के मुखिया रागनी मिश्र, पुत्र वधु राधा रमन मिश्र, परमंडलीय संयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सारण के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97097506575।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
3: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मनोरमा है।
4: जी जी,
5: गाना सुनना है।
4: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: मेरा नाम कुशवाहा पड़ेगा, कानपुर से बोल रहे हैं।
4: अच्छा, कैसे हैं आप?
5: बहुत अच्छे मैम। गर्मी तो बहुत है मैम, आज बहुत दिन खराब हो गया।
4: गर्मी तो है, तो वैसे क्या हो रहा है अभी?
5: अभी बैठे हैं।
4: खाना वाना भी आपका?
5: खाना आपका खाना?
4: जी जी, आपकी फरमाइश बता दीजिए।
5: गाना सुनवाइए मैम। जनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
4: सर, गाना किस करती है?
5: अभी रेडियो रोता को।
4: तो वैसे आप ये रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं?
5: मोबाइल से सुनते हैं। रेडियो भी है हमारे घर, रेडियो से भी सुनते हैं।
4: अच्छा, मतलब मोबाइल ऐप के जरिए?
5: नहीं नहीं, रेडियो जो सर मोबाइल, जो मोबाइल में रेडियो होता है ना।
4: हाँ,
5: किससे सुनते हैं?
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। मतलब कितने समय से सुन रहे हैं?
5: उसी समय से चालू हुआ।
4: अच्छा,
5: 2009 5 जनवरी को जो समय से सुनते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छी की बात है। कैसा लगता है आपको कार्यक्रम?
5: बहुत बढ़िया, हर प्रोग्राम अच्छा लगता है। हर समय समय से, पहले तो 12 बजे बंद हो जाता था ना, 5 बजे खुलता था, तो अब तो चालू हो गया 24 दिन में, और रात में 11 बजे तक सुनते हैं।
4: मतलब आप ऑल प्रोग्राम सुनते हैं?
5: सब प्रोग्राम सुनते हैं, सब सुनता है। कोई काम में चले, कोई बातें नहीं, समय रहता है तो जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है।
4: बढ़िया, आप गाना डेडिकेट भी है?
5: बोले हैं सभी को।
4: ओके, तो ले सकते हैं गाना आपका?
5: जी मैं।
4: जी, रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा आ रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। तो अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन तो लग गया। अभी तो फरमाइश का इंतजार रहेगा मैम, तब बजेगा आज तो कल,
0: कोशिश रहेगा कि
1: तो जी। तो आज फरमाइश है कुमार सानू का, आवाज में है गाने के बोल है, मारे कटारी मैं मर जाऊँ। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: धन्यवाद मैम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, नमस्कार।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
7: जी अरुणा जी, क्या हाल चाल है?
6: जी बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
7: हम जी बढ़िया, और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से
6: जी? जी कैसे हैं आप?
7: यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से परेशान है
6: जी। यहाँ पे भी बहुत गर्मी,
7: लेकिन आप लोग ऐसी बैठे रहते हैं, हम लोग को धूप में चलना पड़ता है, पूरे दिन रोड पे चलना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है।
6: ऐसे क्या करते हैं?
7: मैं गाड़ी चलाता हूँ यहाँ से, और आपके रेडियो से गाना भी सुना रहे हैं। बहुत गाना भी सुना रहे हैं। हमारे इतने आर्जे लोग आए और हम लोग यहीं पे आएंगे, आर्जे लोग हैं कि आज भी हम लोग से प्यार मोहब्बत है और सभी लोग अच्छे जानते हैं। लिखना जितने सारे चल रहे हैं अभी, तो आप लोग अभी अभी आएंगे।
6: वैसे आज की फरमाइश बता दीजिए।
7: जी हेलो
6: जी, जी फरमाइश बता दीजिए अपनी।
7: आवाज का वीक जा रहा है थोड़ा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गाना है तेरा पता मालूम नहीं, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा।
6: जी जी बता दीजिए।
7: आप सुनने वाले कमाल सुनने वाले रेडियो में,
6: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ जिम 90.4 FM।
7: और कुछ मंगलमय हो।
6: नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजी 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी कैसे हैं अनिल जी?
0: बस बढ़िया, आप बताइए और आपकी टीम के बारे में बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और हमारे यहाँ की टीम भी सभी बढ़िया है।
0: आप भारती जी बोल रही हैं ना?
1: नहीं
0: मनोरमा जी बोल रही हैं?
1: जी।
0: अभी मेरा कॉल लगा था, अभी आवाज में डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि कॉल लगा और फिर कट गया, आधा अधूरा बात हुआ था।
1: जी, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कट गया।
0: हाँ,
1: तो
0: तो आज का फरमाइश है हमारा कुमार सानू का सॉन्ग है, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार।
1: हाँ, वैसे आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: गाना तो बहुत कम गाते हैं लेकिन आप कहिएगा तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: जी
0: बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे आजा। याद नहीं है उतना अच्छा से, खराब हो गया गाना ही, खराब हो गया पूरा।
1: कोई बात नहीं यार।
0: थोड़ा सा सुने हुए ज्यादा दिन भी हो गया ना, इसलिए तो सोचे कि आज रेडियो पे ही फरमाइश करते हैं इस गाने का।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अब आप गवा दी हमको, अब भारती जी से जब बात होगी वो भी गवाएंगी, सोनी जी आएंगी तो वो भी गवाएंगी।
1: कोई ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं इसीलिए बोले।
0: नहीं, गाना बहुत कम गाते हैं वैसे, कभी प्रयास कर लेंगे घर से ही, मतलब उसको रिपीट कर लेंगे फिर उसके बाद उस दिन हम गा के सुना देंगे बढ़िया से गा।
1: जी बिल्कुल।
0: वैसे आप लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है रेडियो रिमझिम पे, और आपसे एक बार बात हुई थी तो वो कॉल बजा नहीं था, और बाकी सब ठीक है?
1: जी वैसे तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, आज बहुत दिन के बाद कर रही हूँ।
0: आप स्टार्टिंग में जब आई थी, जब आप लोग शुरुआत में जब आप आई थी और भारती जी को भी उसमें योर वॉइस योर चॉइस में लाया गया,
1: जी।
0: उसी टाइम के बाद बता रहे हैं।
1: अच्छा, हाँ तो कोई मेरी से मिस्टेक हुई होगी। वैसे तो मैं सारा गाना प्ले की थी,
0: हाँ,
1: अगर आप कहीं नहीं सुने होंगे भी हो सकता है।
0: नहीं रेडियो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हम नहीं सुने होंगे, मतलब रेडियो तो मतलब एक सोशल मीडिया का युग होने से मतलब नहीं है, वो सब तो बकवास की चीजें हैं। वो अपनी अपनी जो सरकार आ रही है, तरह तरह की स्कीमें ला रही है, रेडियो जो है वो किसी का नहीं है, वो भारत सरकार का ही है, लेकिन उसका और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ये जवाब नहीं हो सकता, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया।
1: जी।
0: इसमें पारदर्शिता होती है, जो भी चीजें आती है अच्छी ही आती
1: बिल्कुल।
0: है। जी
1: ठीक है अनिल जी, तो अगर गाना उस दिन नहीं बजा होगा उसके लिए सॉरी। और ये
0: अरे
1: कोशिश
0: ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब दिल पे नहीं लेते हैं, हम अपना ही ना परिवार है, परिवार में सबको रहना है, गलती सही सबसे होता है। जी
1: जी तो अनिल जी गाना प्ले करते हैं।
0: जी
1: जी
0: थैंक यू।
1: वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो मैम, 90.4 एफएम में।
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार,
5: कैसी हैं मैम
4: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
5: हम भी ठीक है। नाश्ता पानी हो गया है?
4: हो गया। और आपका?
5: मेरा भी हो गया है।
4: बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नाम?
5: सुनीता देवी।
4: हम तो आवाज सुन के ही पहचान गए, लेकिन क्या करे, अगला आदमी को भी तो पता चले।
5: जी जी जी
4: जी मैम। वैसे कहाँ से?
5: हाजीपुर से।
4: अब क्या हो रहा है अभी?
5: अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी बैठे हैं, तो इसीलिए सोची की तो आज बुधवार है, आज लगाएं कॉल करें। सोमवार को तो नहीं लगाएं, तबीयत खराब था। उपवास से तो सो गए थे।
4: वैसे मौसम भी चेंजिंग हुआ है, इसकी वजह से भी तो।
5: जी जी मैम, दो दिन से तो धूप बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।
4: बहुत ज्यादा। क्या कर रहा
5: है? और सब बोलिए।
4: जी सब बढ़िया। आज की फरमाइश बता रही है?
5: जी मैम, गाना तो भूल गए हैं, मगर एक गाना याद आ रहा है, खेसारी लाल के नहीं है, शंकर भगवान का गाना है, रात दिन रावनी है, रात दिन राउर बायला लाला, वही बजा दीजिएगा मैम।
4: और सुनवाना भी है?
5: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सभी भाई और बहनों को सुनाना है।
4: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
5: जी मैम, सब कोई ठीक है। आप?
4: जी मेरे यहाँ भी सब कोई ठीक है।
5: चलिए ठीक है,
4: ठीक है। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
5: थैंक यू मैम।
4: रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू मैम।
4: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से गोपालगंज।
1: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
0: बस बहुत बढ़िया है जी। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं।
0: जी, आप लोग आपका तो ये रेडियो का जो आदमी सुन करके बिल्कुल हमेशा टाइम का इंतजार करता रहता है कि हाँ अभी टाइम होगा, अभी कॉल करेगा, ये प्रोग्राम अभी सुनेगा। बहुत अच्छा है, सुबह का प्रोग्राम भी तो जो है वो आदमी को जिंदगी के लिए एक नया ढाल बन गया है, जो प्रवचन आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हमको गाना सुनना है, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है।
1: ओके, जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो आप आए और जितने भी ये फैन का दोस्त साथी हैं, जितने भी आदमी सुनते हैं, उन सबको सुनाना। ठीक है
1: जी। तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो बस यही है, मौसम जो है मौसम बना हुआ है बारिश का, ऐसे संभावना लग रहा है कि शाम तक बारिश होएगा, क्योंकि ये भादो के जैसा नहीं लग रहा है, एक कुवार का जैसा लग रहा है। घाम में काफी मतलब वो है, थोड़ा सा भी धूप लगता है ना तो लगता है कि बस चमड़ा सूख गया। सही मौसम नहीं है,
1: ऐसे लग नहीं रहा जैसे कि सावन का महीना चल रहा है।
0: आप ही देखिए ना, बाहर निकल कर देखेंगे तो आपको खुद अंदर का अपना बता देगा कि सावन भादो के जैसा नहीं लग रहा है, ये कुवार के जैसा लग रहा है। कुवार में जैसा धूप निकलता है ना, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं किया था कि चमड़ा कब सूखता है, तो बताने वाला बताया कि कुवार में। आंसर सही हो गया। यही बात है कि दो मास लग गया था ना। दो मास लग गया, अगर सीधा सीधा महीना जोड़ा जाए ना तो ये कुवारी है। ठीक है, मैं रंजी गाना सुना दीजिए, आज सुनाएंगे कि कल?
1: कोशिश रहेगा कि आज ही चले। ठीक है, तो गाना प्ले कर दें आपका।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
3: जी कैसे हैं सुनील जी?
2: बढ़िया है मैडम जी, और बरसात हो रही है और आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
3: अच्छा जी, ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
3: अच्छा, तो बारिश हो रही है अभी उधर?
2: जी जी जी, बारिश, रात का ही पानी गिर रहा है और अभी पानी गिर रहा है।
3: अच्छा, हमारे तरफ तो बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
2: जी आपके इधर गिर रहा है क्या पानी?
3: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, धूप निकला हुआ है बहुत तेज।
2: अच्छा, उधर धूप निकल रही है उधर?
3: जी।
2: अरे वाह, हमारे यहाँ तो कल से आपको ठंडा ही हो गई, हमने पंखा कूलर सब बंद कर दिए हैं, अब तो नॉर्मल है।
3: अच्छा, तो कहीं लोग बारिश से परेशान है, कोई कहीं गर्मी से?
2: जी जी
3: जी। तब खाना वाना हो गया आपका?
2: जी अभी नहीं हुआ है।
3: अच्छा,
2: कौन भारती जी बोल रही है कि सोनी जी?
3: नहीं,
2: मनोरमा जी।
3: जी जी
2: जी, बहुत दिनों में बात हुई है मेरी आपसे आज।
3: जी और क्या है ना, भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी बीच में।
2: और मैडम जी, पिक्चर का नाम है आज दीवाना मोचता नहीं कोई।
3: ओके, और गाने के बोल?
2: गाने के बोल है, सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कुंवारा रखना।
3: ओके, और गाना डेडिकेट किया?
2: जी जी मैडम जी, सबसे पहले आपको है, भारती मैम को है, सोनी मैम को है, और अपने गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितने भी ये रेडियो सुन रहे हैं उनको। और ये प्ले कब होगा मैडम जी?
3: पूरा कोशिश रहेगा कि गाना आपका आज ही प्ले हो।
2: जी जी धन्यवाद।
3: तो गाना प्ले करते हैं
2: जी।
3: ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: धन्यवाद।

0: हेलो, वालेकुम
1: हेलो।
0: अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिन 90.4 FM में।
1: बस माँ का फोन से।
0: जी, क्या हाल चल रहा रिश्मा जी?
1: ठीक बा, आप बताए।
0: जी, हमारो बढ़िया बा।
1: तो कल बने लू।
0: हेलो भाई ना।
1: ठीक हो गल बा, तबे तो ठीक बा।
0: बिल्कुल बढ़िया बा।
1: मुनारवा में
0: जी
1: सुन बनी।
0: जी बढ़िया बानी। रुआ ठीक बनी नो?
1: बने।
0: चलिए बढ़िया की बात है।
1: आज गाना सुना दे।
0: बता दी।
1: हारे हारे हम तो दिल से हारे।
0: काई दो लाइन रुआ गा के बता सकते नहीं?
1: बता दे।
0: बिल्कुल
1: ज्यादा याद नहीं गया, थोड़ा सा याद रहा।
0: हाँ, उतने गई ना।
1: हरे हरे हरे हम तो दिल से हरे। इतने याद है मैडम जी?
0: अभी कोनो बात नहीं के। और ये गाना रहे के क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं।
1: और सुन ले, मैं जितना सुनता सब कोई सुनी।
0: चलिए बढ़िया बात।
1: मैडम जी, अगले
0: शुक्रवार के हम रिकॉर्ड कर। अच्छा,
1: जब हमें गाना हम फरमा सोलो रही। बहुते दर्द दिल प्यारे हो दिल टूटल को जानो।
0: हम वैसे तो गाना तो सब प्ले कर रही।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: आज तो बड़ी

0: उसी की बात है कि एक ही बार कॉल लगाया लग गया।
1: जी जी
0: हाँ, और नहा करके आए थे, जानते हैं कि आज पट्टी खुला है, एक महीना के बाद आज नहाए है। हाँ, सोचे कि अब तो टाइम नहीं है, लगा कर देखे कि लगता है कि नहीं लग गया। बोलिए समाचार, बोलिए अपना।
1: जी सब बढ़िया है,
0: ठीक है ना।
1: जी जी
0: आज तो घाम हुआ है।
1: गर्मी तो बहुत है।
0: गर्मी है आज। गर्मी में गर्म पानी से गोसल किए।
1: अब क्या करिएगा, जब व्यवस्था दी तो नहाना।
0: और सब सुनाइए।
1: जी सब बढ़िया। आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: हमारा नाम है, पहचानते नहीं है, बराबर करते हैं।
1: जी जी पहचानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता लोग तो जाने।
0: मैनुद्दीन अहमद, घर डुमरिया, उसके गाँव थाना में पड़ता है।
1: और सब बढ़िया ना।
0: हाँ,
1: खाना वाना हो गया ना।
0: हाँ अभी तो खाना खाए।
1: ये बढ़िया,
0: अभी खाना खाए है, सेब खाए।
1: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: हाँ हमारा फरमाइश ले लीजिए, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी फिल्म का।
1: और ये आप सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
0: कब सुनाइएगा?
1: पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे आपका गाना।
0: अच्छा ठीक, उसे तो हमें को बज गया, सुन लिए, सुबह भी बज गया, सुन लिए, दो बार आ गया। ठीक है,
1: वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: 94.4 FM में। थैंक यू। मैं जिला सिवान से बोल रहा हूँ। जी मैं निसार अहमद लकड़ी दरगाह जिला सिवान से मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भारती जी?
0: नहीं जी, मैं मनोरमा।
1: अच्छा, मनोरमा जी को।
0: जी
1: अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनते हैं हम। तो गाना हमको सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: लास्ट कॉल है मेरा अब शायद।
0: नहीं
1: अभी है कॉल, इसके
0: कॉल है
1: और गाना है, और थोड़ा गुनगुना कर बता देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: महबूब उसके हमारे।

0: लकड़ी गाना है।
1: ओके, वैसे आप अपना नाम क्या बताएं?
0: निसार अहमद, लकड़ी दरगाह, जिला सिवान।
1: ओके, तो ये आप गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: पहले तो आपको, भारती जी को और सोनी मैडम जहाँ भी हैं, ये गाना उनके लिए भी है और जितने भी रेडियो इंजिन सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए और अपने फैमिली के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
0: थैंक यू
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: जी सर, मास्टर बोल रहे हैं घना से।
3: जी जी, कैसे हैं आप?
4: हम लोग बढ़िया से, अच्छे से हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए?
3: जी जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। लोग
4: बढ़िया हैं, रेडियो रिमझिम परिवार सब लोग अच्छे से हैं।
3: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
4: आपके तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं?
3: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
4: बड़ी धूप कड़ा निकल रहा है।
3: जी, धूप तो है।
4: तो ये तो पहला कॉल लगा हुआ है।
3: जी जी, पहला ही कॉल है।
4: जी तो गाना सुना दीजिए, गाना सुनवा दीजिए।
3: बता दीजिए।
4: 8 और 16 मूवी का। आज सुबह जब मैं जगा, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा, तूने मुझे याद किया है। ये वाला गाना मैडम।
3: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
4: जी, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रेंजन सुनने वाले श्रोताओं हैं सभी को, और हम लोग थनाओ से रोशन ट्रेलर में सुनेंगे सभी लोग।
3: तो ये आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
4: मोबाइल से सुनते हैं।
3: मोबाइल ऐप के जरिए?
4: ऐप के जरिए, हाँ। और रेडियो हम लोग का तब थोड़ी बजेगा, पकड़ भी नहीं करेगा रेडियो में।
3: जी जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: हम धनाव थाना नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार से। जिला रोहतास का हम लोग हैं।
3: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
4: जी
3: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: जी इसलिए भी तो धन्यवाद, मैं संजय कुमार शाह ग्राम बढ़ा मनिया पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: जी कैसे हैं संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी थोड़ा नहीं कहा जाता है, करल छू रहे हैं।
1: जी जी गर्मी तो बहुत।
0: जी जी बाकी हाल खबर ठीक है, बढ़िया है। और कहीं ना रूम में बैठे हैं, बता रहे हैं सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब घर पर जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। और सब उधर का मौसम बताइए, उधर इसे गर्मी क्या है, बरसात हुआ है कि नहीं, अगर होता है कि नहीं बरसात?
1: बहुत है, धूप भी निकला हुआ।
0: जी जी हमारे यहाँ 50 रोज पहले ही से बारिश रुका है, 4 रोज पहले बारिश हुआ था लेकिन 4 रोज से गर्मी चल रहा है। गर्मी तो उस समय था लेकिन फिर भी कह रहे मतलब क्या है कि थोड़ा पानी गिरला पर थोड़ा राहत हुआ है, थोड़ा राहत रहा लेकिन फिर भी पानी रुका रुका फिर भी गर्मी ज्यादा हो गया। खैर प्रकृति के नियम है, चलता जा रहा है। आज गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: तुझे प्यार दे देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, मेरा दिल तो है। इस टाइम सुना दीजिए।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: जी जी चलिए आप कहते हैं तो हम लोग थोड़ा गुनगुनाते हैं लेकिन हम लोग तो गा गाना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी गुनगुना लेते हैं ताकि ट्रैक मिल जाए बढ़िया से आप लोग उसने में सरल हो। सबसे तो पहले कुछ मित्र की याद करना चाहता है, सबसे पहले आपको रेडियो इंजन संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाना से मामा शादी जी सुहा जी भारती सतराल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से सलार अंसारी मोहम्मद सलार अंसारी बजवलिया का विशेष उनको संगीता शाह अशोक हरिंद्र प्रसाद यादव गुप्ता कौशल किशोर प्रसाद जितेंद्र समर्थन नीरज गुप्ता सुरक्षा हमारे नाम से देने पर चले तमाम उसको सुनाते हुए अभी आपसे चलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
2: जी। गाना सुनना चाह रहा हूँ
3: जी। गाना सुनवाएंगे, आप नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
2: कमलेश कुमार बलुआ टोला मनियारा फार्म से।
3: अच्छा,
2: गाना सुनना है बूढ़े राजा के बाबा धाम का गाना।
3: जी बता दीजिए।
2: बूढ़े राजा गाना बाबा धाम के नाम का।
3: कौन सा आवाज कट के आ रही है?
2: बाबा धाम के गाना।
3: गाने के बोल
2: दे घर बाबा के। बूढ़े राजा कौन गाना बजा रही? नाव का गाना बजाई ना।
3: अच्छा ठीक है, मतलब भोजपुरी में या फिर हिंदी में?
2: अरे बाबा धाम का गाना बोलूंगा ना।
3: तो मतलब हिंदी में या फिर भोजपुरी में?
2: भोजपुरी में बजाइए।
3: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है
2: जी?
3: ओके, तो गाना प्ले करते हैं
2: जी।
3: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
0: जी थैंक यू। हम कैसी है?
1: जी बढ़िया है। अपना बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: कोई अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
0: नेहा।
1: कहाँ से बोल रही है नेहा जी?
0: कासा मुसाफिर।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी आराम करेंगे।
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: जी।
1: ये बढ़िया। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
0: सावन मजा न देगी,
1: चूड़ी मजा न देगी, कंगन न मजा देगी।
0: जी
1: ओके। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: आपको और जितने भी रेडियो रिंगिम सुनती हूँ सभी को।
1: ओके। वैसे नेहा जी, आप ये रेडियो रिंगिम को कैसे सुनती हैं?
0: जी ऐप से सुनती हूँ।
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की हैं?
0: जी।
1: चलिए बढ़िया। मतलब कब से सुनते आ गई आप ये कार्यक्रम?
0: 2000।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिंगिम का कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है रेडियो रिंगिम?
0: हेलो माय चॉइस और क्रिसमस फरमाइश।
1: जी चलिए बढ़िया। तो नेहा जी आपका गाना प्ले करते हैं। जी रेडियो रिंगिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार। हेलो मैम, हम बोल रहे हैं ना।
7: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: अपना सुनाइए।
7: जी मेरा भी बढ़िया।
6: अरे हमारे से कोई गलती हो गया है क्या? कितने कॉल किया? 312 कॉल किया, 2 बार लगा उसके बाद ही काट दिया गया।
7: नहीं, कॉल कटा नहीं हो क्या? ना नेटवर्क इशू की वजह से कट जाता है कभी कभी।
6: तो सोचते कि कोई भारी गलती हो गई है हमारे।
7: नहीं नहीं है, कोई बात नहीं है।
6: बहुत परेशानी होती है कॉल लगाने में, है ना? तो ऐसा लगता है कि बना हुआ घर गिर गया। हाँ, अगर विश्वास न हो तो आप एक बार लिसनर बन के कॉल करके देख लेगा।
7: नहीं, हम
6: इतना परेशानी होती है,
7: तब तक दूसरा।
6: हाँ, 300 बारी आज कॉल किया और 2 बार लगा, इसके बाद कट गया।
7: कोई ना,
6: मैं सोचा कि लगता है कोई गलती हो गया है, बोलूंगा कि मैम देखिए हमारी नंबर ही ब्लॉक कर दो, क्या फायदा।
7: नहीं नहीं, ऐसी बात।
6: और सब अपना सुनाइए।
7: जी जी, सब बढ़िया।
6: इस बात को अपने दिल से मत लेना, मैं ऐसे बोल दिया, बहुत परेशानी होती है।
7: समझते हैं।
6: हाँ, तो इस बात को आप दिल से मत लेना, क्योंकि किस से कहेंगे, आप ही से कर सकते हैं ना।
7: जी बिल्कुल।
6: हाँ, तो वही बात है। शुरू से आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे? शुरू से रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं?
7: नहीं आज मेरा रिकॉर्डिंग है।
6: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली। पहचान नहीं रहे क्या? तो मैं ऐसे भी सोचा कि आज लगता है मनोरमा मैम है, इसीलिए क्या बात करने का अलग तरीका है, इसलिए थोड़ी लगता है बिजी ऐसा जा रहा था ना, लग रहा था कि मनोरमा मैम ही है आज। क्योंकि आप लंबा बात होते है ना। चलिए, आप पहले का भी रिकॉर्डिंग हमारी एक ही हुई है, आज भी एक रिक्वेस्ट ले लीजिए, भोजपुरी ही है। मैं ज्यादा करके भोजपुरी ही देता हूँ, लेकिन बढ़िया देता हूँ, कोई अश्लील गाना नहीं। तो आज ये है गोटू राजा के, है गाने का बोल है, खाली दीदे कर और ही काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा।
7: ये आप गाना एक बार गा के बता सकते?
6: खाली दीदे कर और काम बा, माई बाबू के चरण में चारों धाम बा। बस इतना ही।
7: बहुत अच्छा गा लेते हैं
6: मैम। मैं तो बहुत अच्छा गाता ही था, थोड़ी टेंशन में आजकल जी रहे हैं साल डेढ़ साल से, इसलिए थोड़ी वो। नहीं तो मैं तो गांव में एग्जाम जो होता है ना 24 घंटा का, उसमें मैं गाता था, मेन में मैं गाता, पर पानी की वजह से थोड़ी टेंशन में। तो हम तो गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, संगीत हमें बहुत प्रेरणा, संगीत बहुत प्रेम है। इतना मूवी से मुझे प्रेम नहीं है, संगीत प्रेम, संगीत सुनकर मैं रातों भर जगा रह जाऊंगा, इतनी प्रेम है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी हमारी बातों पर गौर करना, बहुत परेशानी हो आप लोगों से बात करने के लिए।
7: जी जी।
6: गाने सुनने का माध्यम तो बहुत है, सुन सकते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक आप लोगों के द्वारा जो गाना बजता है उसका एक अलग ही है। तो ये कब तक बज जाएगा
7: ये गाना आपका? कल बजेगा, लग रहेगा कि आज ही बजे।
6: नहीं, पिछला भी आपका एक बार ही है, गाना मेरा सुना दीजिए।
7: ठीक है, गाना फिर करते हैं
6: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
7: गाना भी करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या खैरियत है
0: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी अच्छा। आपकी तरफ के मौसम कैसा हुआ है?
0: धूप से निकला हुआ
1: जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: आज गर्मी है। वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हाँ, माझा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, और आपका नाम?
1: मेरा नाम साई पलक है।
0: साई पलक
1: जी,
0: बहुत प्यारा नाम है जी। तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी आपके पास कॉल कर रहे थे, एकदम बिजी बता रहा था लाइन। तो क्या क्या अभी लगा है कॉल?
0: चलिए, अब कॉल लग गया तो अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: क्या मौसम आया है?
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
1: नहीं, मतलब इतना ही याद है क्या मौसम आया है? सुना दीजिए गाना। सर, आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं, सभी डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।